आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है बुधवार, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार दिनांक 27 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में

0: चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, बीते हुए कल की चिंता आज की रोशनी को धुंधला कर देती है। सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और शुद्ध विचार हैं। इसलिए हर सुबह को एक नए मौके के रूप में देखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज आप सुनिएगा इस पाठ का भाग 201। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सुनील दत्त पर। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारस नाथ से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। पर सुनिए सदा बहार नगमे और 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान में डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। रात 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई। यादों की परछाइयां का 3रा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशन है दीना नाथ का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। 6:35 होने वाले हैं। आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 201।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिव जी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में है। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूंगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल ने जो कृतियां बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएं, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणिप्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलास से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए शीस गंग, स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृति।

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

0: राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था फिल्म राम राज्य से। आवाज थी सरस्वती राणी की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
1: ता थी थी तत आ थी थी तत मुरली की धुन सुन आई दादे जमुना के तट पर जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद तपन दिग दिग नाद दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग

या लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन दे दे झगन नदादा किट झट झट झट झगन झट झट झगन का झगन का किट झट झट झगन का जी झगन नदा ता धा झट झट झगन का चा झगन का।

हातिम ताई फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में ये गाना राजा मेहंदी अली खान का की बोल थे और एस एन त्रिपाठी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस

0: अंतराल के बाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 7:30 से होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:00 से आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 से होगा कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 से आप सुनेंगे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें बातचीत का विषय होगा तरवर फल नहीं खात है नदी न संचय नीर। सुनेंगे वार्ता, विषय होगा बहु बेगम का मकबरा इतिहास के आईने में। वार्ताकार होंगी फरीदा बानो। साथ ही होगा प्यारा सा गीत और स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से। सुबह 9:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 10:30 से 12:30 तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ। दोपहर 12:30 से आप एक बार फिर जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों के साथ और सुनेंगे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। दोपहर 1:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और दोपहर 2:00 से होगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर 2:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार और 2:30 से होगा बहनों का कार्यक्रम अंगना, जिसके अंतर्गत आज होगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुरमाला। साथ ही चर्चा करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि पर। साथ ही जानेंगे कुछ स्वास्थ्य संबंधी घरेलू सुझाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 3:00 से 5:00 तक आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:00 से एक बार फिर आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों के साथ। होगा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा मिशन लाइफ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कहें ना। साथ ही व्यक्ति विशेष में जानेंगे कंदुकुरी वीरेस लिंगम पंतुल के बारे में और नजर डालेंगे खेल संसार में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 5:30 से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। 6:10 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। 6:30 से होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा 6:45 से, जिसमें चर्चा का विषय होगा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। सुनेंगे भेंट वार्ता किसान उत्पादक संगठन कुछ महत्वपूर्ण बातें विषय पर। वार्ताकार होंगे श्री अरुण कुमार वर्मा, इनसे बातचीत की है राम प्रकाश पांडे ने। जानेंगे बाजार भाव और लेंगे मौसम की जानकारी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार और 7:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत कुंजन। 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या और 9:00 से न्यूज एट 9। 9:15 पर होगा कार्यक्रम महफिल गजल। रात 9:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:30 पर आप जुड़ जाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ और 11:00 से होंगे समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: चंद्र बोस। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी।

0: गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगो का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
1: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
0: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए

0: की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमने रिले किया था हमारे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 101.9 FM बांड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: श्रोताओं, ये भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं अनुराधा वॉडवाल की आवाज में ये भजन।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते। अब फरमाइशी लोक गीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोक गीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
7: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
8: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
7: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
8: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
7: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
8: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
7: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
9: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमृत कलश और आइए कार्यक्रम

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश। 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च

0: कार्यालय निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और

0: टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में

0: तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम सुर संगम।
3: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की

0: सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: श्रोता, ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम की पहली गजल जगजीत और गुलजार की, मिले चली आवाज में।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
3: श्रोताओं, ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले

श्रोताओं ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं विविध रंगों का दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
1: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
1: कॉल करें 6386907006।
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
3: आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आज हम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक पंक्ति पर चर्चा करेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार ने साधुन धरा शरीर। इस दोहे का अर्थ है श्रोताओं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपने जल को अपने लिए नहीं रोकती। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति और महान लोग दूसरों के हित के लिए जीवन जीते हैं। श्रोताओं, यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति में हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती है। पेड़ हमें छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है और सर्वोपरि ऑक्सीजन देता है, लेकिन बदले में हम उसे कुछ भी नहीं मांगता। ना ही हम उसे कुछ दे पा रहे हैं और ना ही वो हमसे कुछ मांगता है। नदी अपने जल से खेतों को सींचती है, प्यास बुझाती है, जीवन देती है, लेकिन कभी यह नहीं कहती कि यह जल सिर्फ मेरा है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश है। देना सीखिए, बांटना सीखिए। आज के समय में हम अक्सर अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। श्रोता, हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हमें सम्मान मिले, हमारी तरक्की हो, लेकिन कभी कभी हम यह भी सोचना चाहिए, हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कारण किसी और को क्या लाभ हो रहा है। श्रोताओं, एक शिक्षक अपने ज्ञान को बांटता है, डॉक्टर मरीज की सेवा करता है, किसान खेतों में मेहनत करता है ताकि समाज का पेट भर सके। ये सभी लोग भी उसी पेड़ और नदी की तरह हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। श्रोताओं, एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, पेड़ हमेशा फल क्यों देते हैं? क्या उन्हें कुछ नहीं चाहिए? दादाजी कहते हैं, पेड़ हमेशा फल क्यों देते हैं? क्या उन्हें कुछ नहीं चाहिए? दादाजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देने में है। बच्चे ने फिर पूछा, तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? दादाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, किसी को खुशी दे सकते हो और किसी का सहारा बन सकते हो, तो यही सबसे बड़ा गुण है। श्रोताओं, सेवा का मतलब सिर्फ धन नहीं दे होता। कभी कभी किसी को एक मुस्कान देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना, किसी जरूरतमंद की मदद करने का जो ये भाव है, यही एक सेवा है। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। कुछ लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाते हैं और कुछ लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। हमें यह समझना होगा श्रोताओं कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं। अगर हम अपने आसपास के लोगों की खुशियों का भी ध्यान रखें तो समाज और भी सुंदर बन सकता है। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, हम प्रकृति से सीखेंगे, हम बांटना सीखेंगे और हम दूसरों की मदद करेंगे ताकि अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं वार्ता। विषय है बहू बेगम का मकबरा इतिहास के आईने में। वार्ताकार हैं फरीदा बानो।
4: बेगम का असली नाम उम्मेतुल जोरा था। वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार के रईस नवाब मुतमानुद्दौला मोहम्मद इसहाक खान की इकलौती

पुत्री थी। उनके पिता सम्राट औरंगजेब के करीबी थे और परिवार ईरानी मूल का था, जो मुगल दरबार में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता था। वह अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी, इसीलिए बेहद लाड प्यार से पली थी। बचपन में ही इनका विवाह अवध के तीसरे नवाब सुजाउद्दौला से तय हो गया था। वह मुगल बादशाह के दरबार के रईस माहौल में पली बड़ी, जहां उन्हें उच्च शिक्षा, संस्कृति और कला का ज्ञान मिला। 1746 में लगभग 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह सुजाउद्दौला से हुआ, जिसके बाद बहू बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। सुजाउद्दौला सफदरजंग के पुत्र थे, जो फैजाबाद शहर के निर्माता थे। जानकारों का कहना है कि बहू बेगम और सुजाउद्दौला का निकाह एक भव्य आयोजन था, जिसमें लगभग 2 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जिसका वहन उनके भाई नजमुद्दौला द्वारा किया गया, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बेगम ने नवाब की हरम में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने 1764 की बक्सर की हार के बाद नवाब को राजनीतिक संकट से उभारा। उन्होंने फैजाबाद में एक भव्य महल, जो कि उस समय मोती महल के नाम से जाना जाता था, जो आज के समय में अयोध्या के राठ हवेली मोहल्ले में स्थित है। उस समय अवध के संस्कृति और भव्यता का केंद्र था। बहू बेगम नवाब की केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली शासक थी, जो अपनी जागीर का प्रशासन स्वयं देखती थी। बहू बेगम और सुजाउद्दौला का संबंध प्यार और सम्मान से अधिक आपसी विश्वास और राजनीतिक जरूरतों पर आधारित था। हालांकि सुजाउद्दौला अपनी विलासित जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बहू बेगम की समझदारी ने उनके वैवाहिक जीवन को मिसाल बना दिया। 1764 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर के लड़ाई में हार के बाद बहू बेगम के वितरित ताकत ने सुजाउद्दौला के सिंहासन को बचा लिया। 1769 में सुजाउद्दौला को घाघरा नदी में एक मगरमच्छ ने हमला करके घायल कर दिया। इसके बाद सुजाउद्दौला बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रियासत का उनकी पत्नी बहू बेगम ने संभाला। दुर्भाग्य से सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद वह अपने बेटे आसिफुद्दौला के साथ एक लंबे विवाद में आ गईं। उनके बेटे ने बहू बेगम की संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसका अवध के इतिहास पर बुरा प्रभाव पड़ा। लंबे विवाद के बाद 1797 में बहू बेगम ने अपने बेटे को भी खो दिया। 1798 में अवध का कार्यभार बतौर वजीर बहू बेगम के सौतेले बेटे सदात अली खां ने संभाला। शीघ्र ही उन्हें सदात अली खां के मंसूबों का अंदाजा हो गया। दरअसल सदात अली खां बहू बेगम की पूरी संपत्ति को हड़पना चाहता था। मरने से पूर्व बहू बेगम ने एक वसीयत बनाई और पूरी संपत्ति 70 लाख रुपए नगद और अतिरिक्त कीमती गहने अंग्रेजों की हिरासत में ट्रस्ट के रूप में छोड़ दी। सुजाउद्दौला अपने जीवन में अपनी प्रिय रानी बहू बेगम के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाना चाहते थे, परंतु आकस्मिक मृत्यु के कारण उनका यह सपना पूरा ना हो सका। उनकी अधूरी इच्छा और मकबरे के निर्माण को

0: इंतजार करने का जिम्मा बहु बेगम ने स्वयं उठाया, परंतु एक शानदार और संघर्ष से परिपूर्ण राजनैतिक जीवन बिताते हुए अयोध्या स्थित दिलकुश महल अफीम कोठी में अपनी अंतिम सांसें ली। मृत्यु उपरांत उन्होंने अपने सबसे खास सिपहसालार दरावली खां को मकबरे के निर्माण की जिम्मेदारी और 3 लाख रुपए सौंप दिए थे। अतः मकबरे का निर्माण कार्य सन 1816 में संपन्न हुआ। बेशकीमती पत्थरों से बनी अवध की यह ऐतिहासिक इमारत करीब 42 मीटर ऊंची है। यह मकबरा रामनगरी के नाका इलाके में स्थित है। आगरा के तर्ज पर बनाए गए बहु बेगम का मकबरा पूर्वांचल का ताजमहल भी कहा जाता है। बताया जाता है कि नवाब और बेगम के खास सिपहसालार दरावली खान ने बेगम की अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए लगभग 50 एकड़ के क्षेत्रफल वाले बागान के बीच इस सुंदर इमारत का निर्माण कराया, जिसके चारों ओर खूबसूरत बाग बगीचे हुआ करते थे। 12 एकड़ से ज्यादा फैले ईरानी स्थापत्य कला के इस अनूठे नमूने में 6 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल का बड़ा आंगन था। दूसरी ओर बागों, कुओं और स्नानागारों आदि से सुसज्जित आरामगाहों का अपना अलग ही आकर्षण था। यह मकबरा 3 मंजिल है, जिसके ऊपरी भाग से देखने पर अयोध्या स्थित सरयू नदी तक दिखती थी। मकबरे के ऊपरी मंजिल पर बने गुम्बदों व हाल की छतों पर बने कला आकृति आज भी देखा जा सकता है। 3 प्रवेश द्वार से होकर मकबरे तक पहुंचा जा सकता है। मकबरे के मध्य प्रकोष्ठ में बहु बेगम की कब्र है, जहां गलियारों द्वारा पहुंचा जा सकता है, जबकि केंद्रीय कक्ष में साहे सीन पर अनेक धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। चारों ओर आयताकार बरामदे हैं, जिसके चारों कोनों पर 4 तल्लीय मीनारें बनी हुई हैं। गुम्बद पर लगा विशाल मोर की आकृति, जो आज भी हवा की दिशा को बताता है। बताया जाता है कि उस समय इस मकबरे में ईरान से लाकर बेशकीमती झांस, फानूस, चांदी, जड़ी, रेलिंग आदि लगाया गया था, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि उनके समय में हिंदुस्तान के 33 प्रदेशों में कोई अन्य महिला उनके मुकाबले में नहीं थी, जिनके भव्य काल में उनके पास 10,000 घुड़सवार और पैदल सेना थी। हाथी और घोड़ों की संख्या अनगिनत बताई जाती है। बताते हैं कि 10-12 दिन की बीमारी के बाद 26 मुहर्रम 1230 हिजरी 28 दिसंबर 1815 को उनका इंतकाल हो गया। इसी दिन उनको दोपहर 2 बजे उनके चाहने वालों ने सुपुर्दे खाक उसी मकबरे में कर दिया, जहां आज भी वह अवध के गर्दिशों को अपने जहन में संजोए सोई हुई है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता बहु बेगम का मकबरा इतिहास के आईने में विषय पर। वार्ता कर रही फरीदा बानू। और अब आइए कार्यक्रम में समय हो चुका है फिल्म संगीत का, तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत को शब्द रचना दी है समीर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
3: आपके संदेश,
4: संदेश से आते हैं
3: आपके गीत,
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
5: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
6: नहीं अछूता हो जिस
5: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
7: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
7: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
7: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
9: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक और प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हम साथ साथ हैं से। आवाजें दी हैं हरिहरन, हेमा सरदेसाई और साथियों ने।

0: श्रोताओं, ये चलते चलते नजर डालते हैं समाचार पत्रों पर। तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को राम मंदिर परिसर में स्थापित राम परिवार परकोटे के 6 उप मंदिरों तथा शेषावतार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ श्रद्धा और वैदिक परंपराओं के साथ मनाई गई। गंगा दशहरा के अवसर पर गत वर्ष 5 जून 2025 को इन सभी देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को में बुधवार से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय समूह का सम्मेलन आज से। अवध विश्वविद्यालय में नए शैक्षिक सत्र के लिए तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में 17 नए कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें पहली बार बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और बीटेक डेटा साइंस जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। भोर से पहली किरण फूटने से पहले ही रामनगरी की गलियां भक्ति की ध्वनि से जाग उठी। कहीं जय श्री राम कहीं का उद्घोष था तो कहीं बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। मंदिर की 76 सीढ़ियां इस दिन मानो श्रद्धा और विश्वास की तपोभूमि बन गई, जहां हर कदम के साथ भक्तों की आस्था का प्रागाढ़ होती चली गई। ज्येष्ठ के चौथे मंगलवार को हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया गया। इसी के साथ हमें कार्यक्रम में दीजिए इजाजत, मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ कुछ नई बातें कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को इस लू की गर्मी से बचाते रहिए।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: प्रणाम अयोध्या।
0: अभी आप सुन रहे थे विविध रंगों से भरा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की ऐप न्यूज और AIR पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 9 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91 61 800

0: नंबर 347।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोता, ये जानते हैं कहाँ से आया है कार्यक्रम में पहला संदेश। हमें हमारे व्हाट्सएप पे संदेश मिला है। सबसे पहला गांव चहलदा बागपत से संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया का। इनकी फरमाइश पर आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं सैनिक फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो कि हमें आई है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। तो आइए इनकी फरमाइश पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं फिल्म कल आज और कल का ये गीत।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: muskrai. Pelle zerna muskrai.
1: Pelle zerna muskrai.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के भेजे हुए फरमाइशी गीत। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं कुछ और फरमाइशें जो कि हमें आई है कोजागिरी कॉलोनी कोपरगांव से सुरेश मलोदे, वर्षा मुलादे, मानसी मुलादे, इनकी फरमाइश पर आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं कोयला फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं के कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे अगले फरमाइश से। तो अगली फरमाइश हमें आई है गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलानिया, सावित्री सबलानिया, सुमन सबलानिया और अंशु सबलानिया, इनकी फरमाइश पर आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत।

शुदा ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो कि आज की आखिरी फरमाइश है। तेलंगाना निजामाबाद से शेखुल्ला बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, तो आइए इनकी फरमाइश पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com। ayodhyaakashvani@gmail.com।

नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और अब समय है आपकी आवाज को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की। तो क्या आप भी चाहते हैं आपकी पसंद के गीत रेडियो तरंगों के माध्यम से गूंजे? क्या आप अपने नाम और अपने शहर की पहचान हजारों श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं? तो फिर जुड़ जाइए हमारे साथ, हमें फोन कीजिए, बताइए अपना नाम, अपना स्थान, और सुनाइए आपकी पसंद, आपकी फरमाइश पर हम सुनाएंगे आप।

0: की मनपसंद गीत, क्योंकि ये कार्यक्रम है हेलो अयोध्या सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आपकी हम सब से जोड़ने के एक खूबसूरत मंच है। तो देर मत कीजिए, उठाइए फोन और अभी जुड़ जाइए हेलो अयोध्या कार्यक्रम के साथ। हमारा फोन नंबर है 7376804090, एक बार पुनः नोट कर लीजिए 7376804090।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
2: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
2: कॉल करें 6386907006।
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हमारी जनगणना हमारा विकास।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
11: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: श्रोता ये जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
12: हेलो मैम, नमस्ते
0: जी। नमस्ते सर, आपका नाम?
12: रिजवान खान बोल रहे हैं।
0: रिजवान जी, आपको किस फिल्म का गीत सुनना है?
12: बरसात फिल्म का गाना सुना दे मैम।
0: जी, बरसात फिल्म का गाना आपको सुनवा दे हैं। आप बताइए आप क्या करते हैं?
12: कंपनी काम करते हैं मैम।
0: हाँ जी, काम करते हैं। काम, इंसान अगर काम नहीं करेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा, इसलिए हम सभी को हमेशा काम करते रहना चाहिए। इससे हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं।
12: जी मैम।
0: तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपकी फरमाइश पर बरसात फिल्म का ये गीत।
12: थैंक यू मैम।

0: चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो,
1: नमस्कार
0: जी। सर नमस्कार, आपका नाम?
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गांव बेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से।
0: हाँ जी धीरज रबारी जी, आपको किस फिल्म का गीत सुनना है?
1: फिल्म का नाम है कभी कभी और गाने के बोल है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: जी आपने बहुत अच्छा गाना पसंद किया है, ये गाना मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं?
1: मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी में जुड़ता हूँ, चाहे फोन इन हो, टेक्स्ट मैसेज हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, कोई जरिए से मैं आकाशवाणी से 17 साल से जुड़ा हुआ, 57 साल हो गए मेरे।
0: ये और तो बहुत अभी तो ही सोशल मीडिया के
1: द्वारा हम आकाशवाणी अयोध्या भी सुन सकते हैं और हमारे मैसेज फोन भी हम कर सकते हैं।
0: आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही हमारा रेडियो इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर प्रेरित होता है और आप इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को सराह रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम में आइए, आपको सुनवाते हैं ये कभी कभी फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: तो ये जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो,
1: नमस्ते मैम, मैं यदुनाथ यादव नाका फैजाबाद अयोध्या से।
0: जी नमस्ते सर यदुनाथ जी, आप बताइए किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं हमको जो है पीपली लाइव का सुना दीजिए। सती संज्ञा तो खूब समाप्त है, महंगाई डाइन फैजाब है, रघुवीर यादव जी की का गाया हुआ गाना।
0: जी जी आपको सुनवाते हैं ये गीत। आप क्या करते हैं यदुनाथ जी?
1: मैं टीचर हूँ, प्रसदीय विद्यालय में टीचर हूँ।
0: हाँ टीचर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक टीचर ही है जो बिना कुछ लिए, बच्चे से बिना कुछ भी लिए, उसे हमेशा प्रगति के पथ पर चलाता रहता है। कहते हैं ना कि शिक्षक ही है जो दूसरों के जीवन में उजाला देता है, चाहे खुद वो गर्मी को बर्दाश्त कर ले।
1: जी मैम, और बच्चा जब 4 साल 3 साल का होता है सबसे पहले स्कूल ही जाता है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: बच्चा हो विद्यालय ही जाता है।
0: इसीलिए तो शिक्षक को गुरु का दर्जा किया दिया गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, उसी के समान गुरु की इज्जत एक समान जो उसको मिलता है, वो शिक्षक को ईश्वर के बराबर का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि वो दूसरों के जीवन में प्रकाश दे सके।
1: जी मैम, और ये मैडम जी हमारा जो है सुबह वाली का पहली बार है, और शाम को तो लगता है 9:30 बजे वाजन तो अधिकतर जो है महीने में।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है यदुनाथ जी की आपका सुबह में भी कॉल लगा और इतनी अच्छी बातें आपसे की, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप एक शिक्षक हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, और चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, उसको बनाने वाला, उसको निर्माण करने वाला एक ही है, वो है शिक्षक।
1: जी मैम बिल्कुल सही।
0: तो आइए आपके फरमाइश पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: मैम, नमस्ते।
0: जी सर नमस्ते, आपका नाम?
1: रमेश ग्रामो पोस्टपल्लिया जयसिंहपुर सुल्तानपुर से बोल रहे हैं।
0: जी रमेश जी, अब आपको किस फिल्म का गीत सुनना है? जिगर फिल्म का गीत सुनना है। जिगर फिल्म में कौन सा गीत?
1: क्या?
0: जिगर फिल्म का कौन सा गीत?
1: कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा ठीक है, कोई भी गीत सुना देंगे आपको। अब आप क्या करते हैं रमेश जी?
1: मैं किराना स्टोर चलाता हूँ, दुकान से हट के आपसे आके बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, किराना स्टोर चलाना भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सारी दैनिक चीजें जो हमारे रोजमर्रा की चीजें होती हैं हमें वहीं से मिलती हैं।
1: क्या मैं
0: आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: हाँ, आवाज आ रही।
0: जी मेरा कहने का मतलब है कि जो आप काम करते हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे हम सब की जरूरतें, जो रोजमर्रा की चीजों की जरूरतें होती हैं, वो वहीं से पूरी होती हैं।
1: जी जी।
0: और आइए कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
1: जी

0: मिश्रा, तो आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: आपका नाम?
1: डॉक्टर आरबी सिंह बोल रहा हूँ, अल्लाह का जनपद शाहजहांपुर से।
0: जी आरबी सिंह जी, आप डॉक्टर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, इस कार्यक्रम में आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तान है।

0: राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी में कौन सा गीत?
1: गीत के बोल हैं फिर इसके नाचेंगे
0: जी आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। आप किस चीज के डॉक्टर हैं?
1: जी
0: स्पेशल
1: फिजिशियन है,
0: कृषि कृषि के डॉक्टर हैं,
1: फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन।
0: अच्छा जनरल फिजिशियन है। सुबह से शाम तक आप व्यस्त रहते होंगे?
1: जी आपका नंबर देखा तो अयोध्या लिखा था तो हमने क्या टाइप करके देखते हैं।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। आप कोई जानकारी देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को ताकि वो इस लू से बच सके?
1: हाँ इस समय लू चल रही है तो इस समय जो है तरल पदार्थ ज्यादा लें और कपड़े पूरे पन्ने शरीर को ढके रहे।
0: जी
1: हमारे यहाँ शाहजहांपुर में जो टेम्परेचर 40 डिग्री जा रहा है आपका अयोध्या में कितना है?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपके यहाँ जा रहा है वैसे हमारे यहाँ भी गर्मी एकदम चरम सीमा पर है, लेकिन काम तो करना ही है क्योंकि जीवन बिना काम के चलना नहीं।
1: जी मैडम बहुत दूर से बोल रहे हैं, जनपद शाहजहांपुर से बोल रहे हैं, बहुत दूर है यहाँ से।
0: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपसे जुड़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमें एक जानकारी मिली, और इसी तरह आप हमेशा हमें कॉल करते रहिए और आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: श्रोता आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो, जय सीताराम।
0: जय सीताराम जी। सर आपका नाम?
1: रामनाथ कोटसराय।
0: रामनाथ जी
1: यादव कोटसराय
0: जी। रामनाथ यादव जी कोटसराय से बात कर रहे हैं आप?
1: जी जी
0: जी। आपको किस फिल्म का गीत सुनना है?
1: मर्द का।
0: जी मर्द फिल्म का गाना कौन सा सुनेंगे?
1: मैं मर्द टांगे वाला मुझे दुनिया।
0: जी बिल्कुल आपको ये गीत सुनाएंगे। आप
1: अपने दोस्त अपने दोस्तों का नाम ले लें।
0: जी ले लीजिए। जी ले लीजिए।
1: हमारे गुरु जी हैं दयाराम मिस्त्री हैं
0: जी,
1: और सुनील यादव सुनील हैं
0: जी,
1: और अनिल यादव हैं
0: जी। यानी आप सब लोगों की एक मिली फरमाइश है ये? आप सब लोगों ने मिल के इस गीत की फरमाइश की है?
1: हाँ हाँ जी सर
0: जी, जी बहुत जी, अच्छी जी। अच्छी बात है। आप क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं?
1: आवाज सफन है जी।
0: आप
1: सीताराम?
0: जी सीताराम।
1: जय सीताराम।
0: जय सीताराम।

0: भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं।
1: श्रोता आइए जुड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे आखिरी कॉलर से। हेलो हेलो,

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: श्रोता आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो हेलो, घड़ी भी इशारे कर रही है कि अब कार्यक्रम से इजाजत लिया जाए।
2: हेलो
1: हेलो हेलो,
2: आवाज आ रही है
1: जी? आपको मेरी आवाज आ रही है, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। आपका नाम?
2: जी मेरा नाम तौहीद अली है, बस्ती जिला से बोल रहा हूँ।
1: जी तौहीद अली जी, आप जानते हैं कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन आपसे आपका कॉल लग गया था इसलिए मैंने आपको लाइन पे ले लिया। आप क्या, आप कहाँ से हैं?
2: जी मैम बस्ती जिला तहसील हरैया सरैया तिवारी से बोल रहा हूँ मैम।
1: जी बस्ती जिले से बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं?
2: जी मैम कुछ नहीं करते हैं, मैं यहाँ दोनों वहाँ से विकलांग है, मैं अपना बकरी दो चार बकरी रखी हुई चलाता हूँ।
1: अच्छा कोई बात नहीं, जीवन जीने का नाम है, तो आप इतनी चीजों के बाद भी अपने जीवन को जी रहे हैं, हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका है इसके लिए मैं माफी चाहूंगी।
3: दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
0: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
0: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
0: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
0: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी,
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम

0: ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक।

0: कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर

0: 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
1: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
2: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
1: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
2: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
1: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
3: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
4: क्या बात है,
3: सुनकर ही जोश आ गया।
4: हाँ
3: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
4: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की

0: बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया।

0: सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो! दुर्गा माता की!
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
2: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
2: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है।

0: जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
1: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
2: नहीं, तू बीवी बचवा रहा है, पीछे हट।
1: नहीं, लेकिन साहब जी,
2: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
1: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
2: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
4: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
3: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटी कोटी प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी, अब जैसे ये चल रहा है

0: अर्जी आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता, मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।

0: वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने उस वक्त. क्या था वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं. तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया. तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया.
1: जी जी जी.
0: उस वक्त वैसा नहीं था. तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
1: वो उम्र भी बहुत छोटी थी.
0: हाँ, काफी छोटी थी. फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है. 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे. तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है.
1: अरे बाप रे.
0: हाँ.
1: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक. गजब.
0: वो ये आशीर्वाद है.
1: जी जी जी.
0: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
1: करते हैं. सवाल पीने जाई
0: जी
1: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
0: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
1: जी.
0: उस वक्त म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था. तो फिल्म से उतना था क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने. अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं. मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे. नमक पारे, गुजिया, घर की मिठाई. तो पहले बाहर से नहीं आता था मैंने.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता. वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर.
1: और वो ठेठ बनारसी.
0: ठेठ बनारसी. तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो.
1: गजब.
0: हाँ. तो उस वक्त रेडियो चलता था. उस वक्त रेडियो चलता तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं. तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं. अब जैसे रसिक बलमा.
1: जी जी.
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता.
1: हाँ हाँ. चोरी चोरी फिल्म का.
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं. मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना.
1: जी
0: तब का सुना हुआ है.
1: गजब.
0: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना. अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
1: होली आई रे कन्हाई.
0: हाँ. अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
1: जी.
0: तो वैसा था. तो फिर आए दिले नादान.
1: वाह वाह वाह. रजिया सुल्तान.
0: हाँ, रजिया सुल्तान. तो कितना कमाल गाना है वो.
1: बिल्कुल.
0: हो हो हो. तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा. तो खैर फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त के मूवीज से हम
1: जी.
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी. फिर ज्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक.
1: अच्छा.
0: बहुत शौक.
1: क्या बात है.
0: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर.
1: अरे वाह.
0: इन द टीम. यस.
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था. ऑलराउंडर. अच्छा. ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा.
1: क्या बात है.
0: था.
1: तो फास्ट बॉलर थे.
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर.
1: वाह वाह वाह. इतना एग्रेसिव. क्या बात है. तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी. लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट. हर चीज में
1: खेल रहे हैं तो फिर बस
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं.
1: डरते डरते.
0: हाँ. कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ. मोबाइल भी नहीं था तब तो.
1: हाँ हाँ बिल्कुल.
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ. तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए
1: जुनून के तहत खेल.
0: हाँ. वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं.

0: चल रहा है नाश्ता पानी, और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: जैसे
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है.
1: बिल्कुल.
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं. तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में. फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है. पर घर वाले
1: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी.
0: महंगी पड़ती थी.
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे.
1: ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: ले आए.
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों.
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं.
0: स्टूडियो चलते ना,
1: स्टूडियो चलते,
0: मजा आता है.
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए. पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहां पे
1: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो.
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने. और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक.
1: हाँ,
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे.
1: जी,
0: दादाजी अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त. तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का. तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर. दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ. पूरा अभी जो मैंने तानपुरा चलाया,
1: जी जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी. तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी. तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का. तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी राग का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए. और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी. उसमें अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया. तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें.
1: बिल्कुल.
0: तो उस वक्त क्या होता था सर के, हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था. वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी. दुनियादारी की चीजें समझ आती थी. बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था. हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी.
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर भी नहीं सीख सकते.
1: नहीं, बिल्कुल नहीं.
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है. पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे. और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना. और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे. पिताजी हमारे घर में, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी.
0: तो पूरे एक हमारा चक्कर
1: लगता है.
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं. वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो. और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ. तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था. फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीजें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए. तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं.

0: तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का.
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है.
1: हाँ.
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए.
1: बिल्कुल.
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए.
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी. तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा.
1: गजब. यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था.
0: वही था.

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गजल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज है, हसरत त्रिमिजी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

नॉन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो कि है ये मिलन ख्वाब सा, इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे ये नगमा जिसे सवा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से ये नज्म को. आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक

0: दावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल है, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थी धन्य जवानी जो शहीद।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम का पहला गीत चंचल सांडिल की आवाज में।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मैया रे मैया ममता।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं, अत्यधिक गर्मी, हीट वेव, लू लगने के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह। आकाशवाणी अयोध्या आपको दे रहा है। हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना है आपको? जी हाँ, सावधान रहें। प्रचार माध्यमों से हीट वेव लू के संबंध में जारी की जा रही चेतावनी पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक, लू लगना के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी

0: मूर्छा आदि को पहचाने। यदि उपरोक्त किसी भी लक्षण एवं हीट रैश, घमोरियां और हीट क्रैम्प मांसपेशियों में ऐठन का अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। हाइड्रेटेड रहें, यानी शरीर में जल की कमी से बचाव आपको करना है। अधिक से अधिक पानी पिएं। यदि प्यास न लगी हो तब भी पानी अवश्य पिएं। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ लेकर जाएं। ORS, घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, माड़, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल एवं सब्जियों जैसे तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद, पत्ता इत्यादि का उपयोग करते रहें। शरीर को ढक कर रखें। हल्के रंग के हल्के वस्त्र पहनें। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढक कर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का प्रयोग करें। धूप से जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहने एवं पैरों के बचाव के लिए जूते चप्पल का प्रयोग करें। यथासंभव अधिक से अधिक अवधि के लिए घर, कार्यालय इत्यादि के अंदर रहें। उचित वायु संचरण वाले शीतल स्थानों पर रहें। सूर्य की सीधी रोशनी तथा शुष्क हवा को रोकने हेतु उचित प्रबंध करें। अपने घरों को ठंडा रखें। दिन में खिड़कियां, पर्दे तथा दरवाजे बंद रखें, विशेषकर घर तथा कार्यालय के उन क्षेत्रों में जहां सूरज की सीधी रोशनी पड़ती हो। घर, कार्यस्थल से बाहर किए जाने वाले कार्यों को सुबह और शाम को करने की यथासंभव कोशिश करें। शाम या फिर रात के समय में घर तथा कमरों को ठंडा करने हेतु इन्हें खोल दें। जानवरों को छायादार स्थानों पर रखें तथा उन्हें पर्याप्त पानी पीने को दें। उच्च जोखिम समूह हेतु निर्देश। उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि एक वर्ष से कम आयु के शिशु तथा अन्य छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बाहरी वातावरण में कार्य करने वाले व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, विशेषकर हृदय रोगी अथवा उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में जा रहे हों। इस समूह के लोग सामान्य आबादी की तुलना में हीट वेव लू के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इन समूहों के बचाव पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। अन्य सावधानियां भी हैं, जैसे बुजुर्ग तथा बीमार व्यक्ति जो अकेले रहते हों, उनकी नियमित रूप से देखभाल की जानी चाहिए। घरों को ठंडा रखें। दिन के समय पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि बंद रखें तथा रात को खिड़कियां खोल लें। शरीर के तापमान को कम रखने के लिए पंखे, गीले कपड़े इत्यादि का प्रयोग करें।
1: और अब आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे बेचन राम और साथियों की आवाज में।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: और अब आपको सुनवा रहे हैं एक समूह गान।

0: इसी समूह गान के साथ ही हमारा आज का अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी आप सुन रहे थे औधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1:01 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फेसबुक आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के

और वैसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में आप सभी का स्वागत है। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमारे पास संदेश पहुंचा है कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल का, और प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं हमारे पास। अगला संदेश बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव चौहान, और लाल कुर्ती रुड़की कैंट से संदेश भेजा है राजेश वर्मा ने। लवलेश पवार ने संदेश भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और इसी गाने के लिए अगला संदेश पहुंचा है बरेली मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर का, और पटेल नगर

मलौट से सुनना चाहते हैं रमेश कुमार। भीरूलाल वाकतरिया धाकड़ जी हाँ, इन्होंने संदेश भेजा है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। और अगला संदेश दिनेश वर्मा का है, इन्होंने संदेश भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से संदेश भेजते हैं रविंद्र सिंह झाबड़ा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म कर्तव्य का ये गाना, जिसे आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: रौं एक सूचना, हीट स्ट्रोक के लक्षण गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना, पसीना ना आना, पल्स तेज होना, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति, सिर दर्द, मितली, थकान और कमजोरी होना, चक्कर आना, मूत्र ना होना या कम होना आदि। हीट स्ट्रोक के चलते मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं? आप जान लें कि उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों, विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है तथा शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। मनुष्य के हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40.6 डिग्री सेल्सियस यानी 105 डिग्री फारेनहाइट या अधिक तापमान अथवा गर्म हवा में रहते हैं तो उनके मस्तिष्क में क्षति होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब ऐसे में क्या करना है आपको? प्रचार माध्यमों पर हीट वेव लू की चेतावनी पर ध्यान दें। अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्के रंग के पसीना सोखने वाले हल्के वस्त्र पहने, धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का प्रयोग करें। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें तथा छाते का प्रयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोछें अथवा नहलाएं तथा चिकित्सक से संपर्क करें। यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ ले जाएं। ORS, घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, माड़, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। पंखे और गीले कपड़ों का उपयोग करें तथा बारंबार स्नान करें। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प्स के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, पसीना, मूर्छा आदि अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। अपने घरों को ठंडा रखें, पर्दे, दरवाजे आदि का उपयोग करें। शाम और रात के समय घर व कमरों को ठंडा करने हेतु पर्दे, दरवाजे खोल दें। सूर्य के ताप से बचने के लिए जहां तक संभव हो घर के निचली मंजिल पर रहें। कार्यस्थल पर पीने का ठंडा पानी रखें। लोगों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें। श्रम साध्य कार्यों को ठंडे समय में करने का प्रयास करें। घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ाएं। गर्भस्थ महिलाओं और रोगग्रस्त लोगों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में आपको क्या नहीं करना है इस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद और खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़ें। दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहनें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रम साध्य कार्य न करें। अधिक प्रोटीन तथा पासी एवं संक्रमित खाद्य एवं पेय पदार्थों का प्रयोग न करें। अल्कोहल, चाय व कॉफी पीने से परहेज करें। और अब अगले गीत की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी हाँ दोस्तों, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास संदेश भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा ने। अगला संदेश आया है सहारनपुर से राधा नामदेव का, और इसी गीत के लिए सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं फनीश चंदन। और ये संदेश आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी का। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी ने संदेश भेजा है, और अगला संदेश पहुंचा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान का। और गुलाब गुलबा लूद आलूट रतलाम मध्य प्रदेश से संदेश भेजते हैं विक्रम मालवीय। और ये संदेश आया है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले का। और

गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी ने संदेश भेजा है और अगला संदेश पहुंचा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान का। और गुलाब गुलबा लूद आलूट रतलाम मध्य प्रदेश से संदेश भेजते हैं विक्रम मालवीय। और ये संदेश आया है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले का। और नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से संदेश भेजते हैं वेद प्रकाश मेढ़ा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से संदेश भेजते हैं पीयूष सिक्का। और आप सबकी पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं फिल्म आराधना का ये गाना जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार।

0: हैं।
1: भारत की आवाज़ को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: और दोस्तों, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए संदेश हमारे पास भेजते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से संदेश आया है अरुण कुमार मालवीय दर्द का। और रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से संदेश आया है लाल गिरी गोस्वामी का। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से संदेश भेजते हैं फैसल इमाम। और ये संदेश आया है राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू का। योगेश सरवा बन बघेरा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं। और इसी गाने के संदेश आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा का। जलालाबाद वेश से सुरेश गगनेजा और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से संदेश भेजते हैं राजेश कुमार वर्मा। इसी गाने के लिए अगला संदेश आया है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म अभिमान का ये गाना जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार।

और दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है साहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर का। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से संदेश भेजते हैं दिलशाद हुसैन, और मसूरी लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से जाकिर मंसूरी, और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर का। और हौड़ी खेड़ा सिरसा से संदेश भेजा है राधे श्याम शर्मा ने। घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से संदेश आया है निसार सलमानी का। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से संदेश भेजते हैं उमा सिंह, और रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है रघुवीर नगर से दिलावर खान का, और नागपुर महाराष्ट्र से संदेश आया है कमल सामने का, और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कुली का ये गाना।

0: विक्रम कुछ तुमने कहा का वादा वक्त बीत चुका है, बाकी गाने बाकी संदेश इस अंतराल के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

असली फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, राज आपके साथ है आपका दोस्त गिरिजेश निषाद। आइए सुनते हैं अगले गीत के लिए जो हमारे पास फरमाइश आई है, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से और लाहौडा बागपत से संदेश भेजते हैं जगमोहन सिंह प्रजापति। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी ने संदेश भेजा है और ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से संदेश हमारे पास भेजा है। बिरडी से संदेश आया है राजेश सोनी का और आरायन श्रीगंगानगर से बनवारी जयपाल का। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ ने संदेश भेजा है और ये संदेश आया हीरावली फाजिल का पंजाब से सुभाष।

दोस्तों एक आवश्यक सूचना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के संदर्भ में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो, वह इसमें प्रतिभाग कर सकता है। आयु सीमा 31 जुलाई 2026 को। प्रतिभागी बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का कार्य, घटना और उपलब्धि नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर की होनी चाहिए। विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2026 है। बच्चे स्व नामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना समाप्त।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानी

0: दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: और अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन उससे पहले पढ़ देते हैं संदेश। गांव जाखो से संदेश भेज रहे हैं शंभु दयाल, संदीप कुमार, पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से संदेश भेजा है, और उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई ने संदेश भेजा। रावर करनाल से संदेश आया है ज्ञान भूषण शर्मा का, और चरौदा बार नवा पार बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं नंद कुमार ठाकुर। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी का, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश चंदन, और टोरोवाल नवा शहर पंजाब से संदेश आया है गगनदीप थांदी का। और ये संदेश पहुंचा है हमारे पास दतरेंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा का, और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से सुनना चाहते हैं तुलसी मस्कीन। तो दोस्तों, आप सबकी पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं फिल्म ब्लैक मेल का ये गाना, जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: और दोस्तों आइए सुनते हैं अगला गीत उसके पहले संदेश हम आपको पढ़ देते हैं कि पंचकूला चंडीगढ़ से हमें संदेश भेजते हैं तुलसीदास शुभ मस्कीन और ये संदेश आया है शंकरपुर उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव का ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से संदेश आया है उदयवान पाल का राजकमल रेडियो श्रोता संघ ऑस्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं रामचंद मखीजा और ये संदेश आया संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली का और इसी गाने के लिए हमारे पास संदेश भेजते हैं खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा और ये संदेश पहुंचता है हमारे पास मारहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी का और बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे इसी गाने को सुनना चाहते हैं जमानिया जिला गाजीपुर से हमें संदेश भेजते हैं सुरेश जायसवाल तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म हम है राही प्यार के फिल्म का ये गाना जिसे आवाज दे रहे हैं कुमार सानू अलका याग्निक

कार्यक्रम का आखिरी गीत और जिसके लिए संदेश हमारे पास पहुंचा है पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य का और ये संदेश पहुंचा है किशनगंज बिहार से रविंद्र दास का। अगला संदेश है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग ने भेजा है संदेश और पुरानी भिलाई पदून नगर चरोदा छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी और ये संदेश पहुंचा है मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज ने और उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत बठिंडा खेड़ा वर्डिंग खेड़ा पंजाब से संदेश आया है आर कुमार का और ये संदेश पहुंचा है देवरी भाटपारा के आर साहू का और अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान का। अगला संदेश और आखिरी संदेश अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक संदेश भेजते हैं और आप सभी ने सुनना चाहा फिल्म सूरज का ये गाना जिसे आवाज दे रहे हैं मोहम्मद रफी, आइए सुनें।

0: मोहम्मद रफी के गए फिल्म सूरज के इसी गाने के साथ ही फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब समाप्त होता है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
4: नहीं अछूता हो जिस
3: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
0: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और

0: आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत सौम्या राव की आवाज में।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
7: ayodhyaakashvani@gmail.com

0: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
1: और अब आइए सुनते हैं अगला गीत स्नेहा पंत की आवाज में।

स्नेहा पंत के इसी गीत के साथ ही हमारा आज का गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचारों का बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

स्नेहा पंत के इसी गीत के साथ ही हमारा आज का गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचारों का बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO

0: लोग हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरे संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस

0: समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष

0: गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों का बुलेटिन दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगना।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161873347।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: नेक नेक लोकगीत से सजाए के आपके मन भावन फरमाइशी लोकगीत के कार्यक्रम लोक सुरमाला का लेके हाजिर है आपके रेडियो सखी आरती। सगरो श्रोता भैया बहनी का हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बताओ सखी, कैसे हैं आप सब? देखा ना, गर्मी अपने चरम पे है, तापमान बढ़ते जाते हैं और देखो नौतपा भी लाग गए, यानी कि जो 9 दिन होते ना ये महीना के, ये बहुत ही गर्म होते और ऐसन में हमें अपन ध्यान देवे के चाहिए। साथ ही साथ जो अपन गोरु बछरू बांधे हुए घर में या जो जानवर हुए पशु पक्षी उनके भी ध्यान देवे के चाहिए। साथ में घर के जितने सदस्य है सबका भी सजग करत रहे कि भाई खूब पानी पिए, अपने शरीर में नमी बनाए रखें। तो मैं देखो बड़ी नीक कहावत है ना आपसे साझा करी थे, समय कैसन भी हो थकाए ना सकत, ठोकरी गिराए ना सकत, संकल्प है जीते के तो परिस्थितियां हराए ना सकत, बस यही हौसला बनाए के रखे के फिर जीवन के सफर बहुत आसान हो जाते ना बहनों। देखो सुख दुख का धूप छाव के नए समझे के चाहिए और हर पल नीक से भाई जिए और चेहरा पे खूब सुंदर सा मुस्कुराहट सजाए के रखें। तो कार्यक्रम है आपकी फरमाइश के लोक सुरमाला में, आज पहली फरमाइश ली थे दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, बानी आरो, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ संगीता आरोही, प्रियांशी सोनी, गांव अरायन, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला सोनू, ममता दिशा, मोक्ष सुशांत, विक्रम जयपाल, ग्राम पोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, रितिका, आदित्य कसाना, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोरधन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, दत्तरेंगी भट्ट भाटा पारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वासी, सुहेल हसन अब्बासी।

अनम यशरफ अब्बासी पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन साह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विनी मंगला बेन राजेंद्र जी साह भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा कोयल छिपा पूजा परिहार आप सब गाड़ी धीरे चलाओ सुंदर सा गीत सुनने के फरमाइश किए हैं। तो आप सबके फरमाइश पे सुंदर सा गीत आपके रेडियो सेट पे।

श्रोता बहनों, कितना नीक नीक सुंदर ढंग से आप सब अपन संदेश भेजे जाते हैं, कितने ध्यान से कार्यक्रम को सुनते हैं, बहुत ही नीक लागत है। तो भाई देखो, ऐसे ही कार्यक्रम को सुनत रहे। और रही बात गर्मी के ना, तो भाई देखो, ऐसे परेशान होवे की जरूरत नहीं है। कहाँ से मौसम है, मौसम पे केहू के जोर नहीं होते। तो जौन अपने बस में है ओका हमें करे चाहिए, यानी कि हमें खूब अच्छे से अपन खान पान रखे के चाहिए, अपन रहन सहन रखे के चाहिए, तो जोने से कि हम ये गर्मी का झेल सकी और खुश रह सकी, स्वस्थ रह सकी, है ना। अगली फरमाइश ले थे रणजीत सिंह जी गोरखपुर से। आप कोयल बिन बगिया ना सोहे गीत के फरमाइश किए हैं। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, बिफरा नवाज, बेबी चाहत सादिया, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी रायपुर छत्तीसगढ़ से, विनोद वंडलकर वीड़ा, विविधा वंडलकर अहमदगढ़ मंडी पंजाब से, रवीना अनवर अंसारी, आफिया जावेद अंसारी, सुराज अख्तर, जैस्मीन सकीला, सना समाज, समस्त अंसारी परिवार, आप सब कोयल बिन बगिया ना सोहे गाना के फरमाइश किए हैं। तो आप सबके बाजा पे खूब सुंदर सा गीत आप सुनेगा शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में।

0: श्रोता बिनो, छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो, लेकिन आप सब कार्यक्रम में बनी रहिए। मिली थे छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर है आपके रेडियो सखी आरती। श्रोता बहनों, जीवन में अगर कुछ बड़ा कर रखे ना, तो मन से डर का निकाला बहुत जरूरी है। कहे से डरा हुआ मन ही कभी आगे नहीं बढ़ पावत। और ये धरती पे जितना भी लड़ाई झगड़ा मतभेद है ना, वह के इलाज खाली प्रेम और भाईचारा है। आपसी रंजिश से कुछ नहीं हासिल हो सकत। ऐसा महान विचार एक महान पुरुष के ही हो सकते है। वो महापुरुष है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके प्रेम से चाचा नेहरू भी बोला जाता है। आप ननवाल लड़कन से बहुत प्रेम करत रहे ने। 14 नवंबर 1879 का प्रयागराज में आपके जन्म भरा। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, और आज 27 मई है, आज आपकी पुण्यतिथि के रूप में मनावा जाते है। तो आपका शत शत नमन करे थे। आप आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी याद किए जाते हैं। भारत के चौमुखी विकास खातिर और आजादी दिवस में पूरा जीवन लगाए थे। भारत के शिक्षा उद्योग विज्ञान का नवा राय दिखान। तो भाई देखो, हम सब देशवासी का अपने आपके त्याग का याद करे थे। आपके विचार से प्रेरणा लेके हम सब भी देश समाज के विकास खातिर अपन योगदान जरूर देवे के चाहिए सबका। ऐसा महापुरुष का शत शत नमन एक बार फिर से। अगली फरमाइश ले थे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा संबलपुर, कांकेर से ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इश्का यादव, तेजल यादव, रावर करनाल से विनोद, लखनपाल धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया अयान बाबू चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, ग्राम गुदूनपुर पोस्ट जगदीश, जिला बस्ती जया रावत, अजिता रावत, आशीष, अभय, अकुल, मम्मी पापा। आप सबके फरमाइश पे सुंदर सा गीत आपके रेडियो सेट पे।

तो वे कहा जाते है ना, पहला सुख निरोगी गायब है। देखो जब हम पूरी तरह से सेहतमंद रहा ना, तभी दुनिया के सगरो सुख जो है सुख लागत है, नहीं तो सब कुछ बेकार लागत है। देखो भाई इतनी गर्मी में हम कैसे अपने देही का तरोताजा रखी, अपने दिमाग का शांत रखी, एक बदे हमें कुछ उपाय करत रह चाहिए। वैसे भी देखो सगरो सखी लोग बहुत ही सजग है, सचेत है, जानी थे, लेकिन देखो कबो कबो हम जानबूझ के भी लापरवाही कर थे, वो काम हम नहीं करे। तो देखो अपने प्रकृति में इतनी सारी चीजें है ना कि अगर उनका हम ध्यान से उपयोग करी ना मौसम के हिसाब से तो के बड़ा ही फायदा मिला था। वैसे ही खसखस होते हैं जो उनकी कितना फायदेमंद होते हैं, यानी कि पोस्ता के दाना। गर्मी देखो इतना है तो ये में अक्सर देखो खसखस के शरबत लोग बनावत है ना। तो भाई देखो एक जो तासीर होते ना बहुत ही ठंडा होते, एक शरबत पिए के चाहिए और ये के वो पिए से खूब मीठी नींद भी आवा थे, दिमाग शांत रहा थे। और सुबह से पहले अगर दूध के साथ ही हमें कर ले ना तो अक्सर देखो जी भैया बहनी का अनिद्रा के दिक्कत होते ना तो दूर होते। अगली फरमाइश ली थे रावर करनाल से विनोद लखनपाल, शशिलता गोसाईगंज से ये गीत के फरमाइश किए ही, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना दानिश आशिफ शेख, आप सबके फरमाइश पे पिया का लाद लेगी गाना बहुत ही सुंदर सा गीत है, सुने आप सभी का अपने रेडियो सेट पे।

और देखो बहनों, अगर पेट में एसिड बना था ना, तो होकर शांत करता है। गर्मी में पसीना ज्यादा होने से देह के पोषक तत्व यानी मिनरल्स कम हो जाता है, तो खसखस के ठंडाई या शरबत पिए से ताजगी बनी रहता है। अगर हाथी घोड़े में जलन है तो कभी कम करता है। इनमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलवे करते हैं, हाजमा भी खूब नीक रहता है। तो भाई देखो, आखिरी फरमाइश है गाँव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, नेहा धारा रोड से आप लिखा थी, आपका अंगना कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मधुर अवधी बोली के साथ महिलाओं के लिए ज्ञानवर्धक जानकारियों का संगम है, मन भावन है। नेहा जूही, सोनम त्रिषा, अनूप, रवि राज, मम्मी पापा, आप सब मिलके कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुना थे, बहुत पसंद करते हैं। तो नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, सांकरा सोमनी जिला, राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद साहू, समस्त साहू परिवार, जिनवानी स्मृति नगर जिला दुर्गा छत्तीसगढ़ से सुरति रमेश साहू, आप सबके फरमाइश पे कुछ सुंदर संगीत आपके रेडियो सेट पे

0: श्रोता बहनों, आप सब कार्यक्रम सुने थे, कीमती समय निकाल के इतना अच्छा अच्छा संदेश फरमाइश भेजे थे कि खातिर सगुरु श्रोता भैया बहनी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम से संबंधित सुझाव भी भेज सकते हैं अगले कार्यक्रम में। हम रोचक जानकारी और नीक नीक गीत के लेके फिर से मिले, तब तक खातिर आरती का देवनमती नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम।

0: मंगनामा होय वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सकीब, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ, जहाँ ज्यादा सकी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगना। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र और सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है आजकल, पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है ये ऊपर से लेके नीचे तक
0: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते, मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
1: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
0: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी की जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें, तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
1: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले, है ना।
0: और साथ ही
1: 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर पर

0: लगा के,
1: जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं। और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
0: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना ले।
1: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज।
0: जी,
1: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
0: हल्का
1: वगैरह लें।
0: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
1: तरह तरह के व्यंजन
0: जी,
1: तरह तरह के चावल,
0: तरह तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं, पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का।
1: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसे, कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
0: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं, एक आप तक पहुँचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है, ये
1: आप क्या सोचते हैं,
0: क्या सोचते हैं इसके बारे में।
1: इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
0: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण, अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
0: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है,
0: क्या
1: है सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
0: तो आज कहाँ चलने वाले,
1: आज हम साड़ी लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश की है।
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, बिलखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक जो उनके लुक आए,
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती है।
0: जी,
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बनाए, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी, जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्त चित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु

0: बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए

0: भव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। कितना कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
0: क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
1: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है, फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
0: जी। कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि इसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल लेना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आंच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है इसलिए कोई भी 2 साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती, मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती हैं कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती।

0: ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पर।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन
1: नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ,
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल। जिसके लिए सब लोग, मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती, हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती है, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल। और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल। सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम

0: बढ़ रहा है वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते ना तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: हैं। और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है, क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके

0: तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है.
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल रहा है. एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्गों बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं. ये इस तरह की रिपोर्ट आई है. और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल
1: हो रहा है.
0: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती. जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
1: और हम शिकायतें करते रहते हैं आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं. तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए.
0: बिल्कुल. और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को.
1: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही. और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है. सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये. इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं.
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है. और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सदृढ़ नहीं हुए तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है.
1: बिल्कुल. और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और फंस भी जाते हैं. ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं. उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं. तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है.
0: ऐसे
1: तो,
0: गेम बना रहे हैं ना वो लोग कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है. जैसे कि बच्चों में होता है वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके की गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं तो जिससे कि उनको
1: तो ये और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती और वो फंस जाते हैं उसमें. तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से.
0: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के.
1: बिल्कुल. और इसी को लेके देखो ना कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं. ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं. वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है. शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है. वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं. मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है.
0: बिल्कुल. और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है जिसको हम पढ़ लेते हैं. गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार. जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था. तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था. सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी. जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले. उससे इससे सीखा, उससे सीखा ज्ञान का पान कर

0: लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
0: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना, पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकल आई आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ये हम कभी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीजें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीजें को करें, तो कोई चीज इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि वो फायदेमंद है, बल्कि वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीजें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लिए तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही का। और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं, उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी,
0: क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं।

0: यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती है ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है, बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर एक हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है, फिर वो

0: और तीता तीता। तो आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
1: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
0: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पे विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
1: तो अब क्या करना चाहिए?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: चलिए।

0: शक्ति, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से 1/2 कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, 1/2 कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें 1/2 घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे 1/2 घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध है लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर 1/2 घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं, और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए, फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं, चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है, वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है, तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नजदीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहां पे भी हुई है। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहां से मैं आई हूँ वहां पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है, जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी। बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए, और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर, ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में, ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफी एज ए नो टीन एजर काफी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ।

0: डेफिनेटली डैड ने बोला व्हाइट, तो व्हाइट, तो पता चला एप्रिन भी व्हाइट होता है और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहां से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफी सीरियस स्टडीज और हार्डवर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आंखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहां से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूँ कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहाँ आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर एपीजे कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक, देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य।

एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया, तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है. आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको इम्पावर करती है. पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज्यादा एजुकेशन हुआ तो उनकी एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे. बट जिस तरह से एजुकेशन

0: स्टडीज थे, बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा. बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था. तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे. ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है. वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से. तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे.
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है. इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है. तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं. शुरू किया था फीमेल फेटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अब के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही. ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज्यादा दिख रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं. उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना. आप उसे प्ले कर

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहां पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी

0: ये भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी, तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया। और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वाज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: अगर कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो लाइक कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है, तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी, टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
1: जी।
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए। आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए, तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था, लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है। और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बुला रही, डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं, डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए. हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं. मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने

0: किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी, तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूँ कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है, तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे, तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीजों पर आप ज्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे की वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती नहीं, अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
0: प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहां पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलोअप.

0: वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर, 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है। अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इंफॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब से आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी।
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी।
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयां फेल है, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और

0: परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है. जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता. एक डीप वैक्यूम. या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है. वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया. और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है. और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है. आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे. तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना.
0: ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट.
1: सुनते ही गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किकबॉक्सर आल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है, पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी हर स्पेशलिटी के, 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज्ड लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारी देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हो, तो उन्हें एक सेफ एनवायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा चीज है। और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से।

रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी

0: जॉन अब्राहम, मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्रकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.9 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं और अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है वंडरफुल वेंसडे और आपकी दोस्त मंजुला सिंह लेकर आ चुकी है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो चलिए जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। आज चर्चा होगी मिशन लाइफ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कहें ना पर। व्यक्ति विशेष में है कंदुकुरी वीरेश लिंगम पंतुलु। उसके बाद होगा खेल संसार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी चर्चा। दोस्तों बात करेंगे हम मिशन लाइफ, जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। दोस्तों अभी जब मैं रेडियो स्टेशन के लिए निकल रही थी घर से, तो रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पड़ती है, वहां मैंने कुल्हड़ वाली चाय पी के तो बहुत अच्छा लगा। पर वहीं पास में खड़े थे एक भाई साहब, उन्होंने प्लास्टिक के कप में चाय पी और उसे पीकर सीधे सड़क पर फेंक दिया और चल पड़े। उन्हें देखकर मुझे लगा कि अपने 5 मिनट की सहूलियत के लिए हम इस धरती को सालों साल के लिए दर्द दे देते हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं मिशन लाइफ की, और आज का हमारा जो टारगेट है वो है एक ऐसा विलन, और उस विलन को हमें हराना है। ये विलन हमारे आसपास हर जगह घूम रहा है और वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो चलिए आज मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक को कहते हैं नो। अब जरा देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या क्या। वो प्लास्टिक की थैलियां, स्ट्रॉ, पानी की बोतलें, चम्मच, रैपर्स या पानी के ग्लासेस, चाय के कप्स, जो भी हम एक बार इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। और आपको पता है जो प्लास्टिक का कप लोग 2 मिनट में फेंक देते हैं ना, उसे इस धरती से पूरी तरह खत्म होने में 400 से 500 साल लग जाते हैं। यानी हम तो चले जाएंगे पर हमारा फेंका कचरा यही रहकर आने वाली पीढ़ियों का दम घोटेगा। हमारे समंदर, हमारी नदियां, हमारे बेजुबान जानवर सब इस प्लास्टिक से परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन बहुत आसान है। मिशन लाइफ से हम अपनी लाइफस्टाइल बना रहे हैं एनवायरनमेंट के अनुरूप। बस अपनी कुछ छोटी छोटी सी आदतें बदल रहे हैं, जैसे कि जब भी मार्केट जाएं तो घर से कपड़े या जूट का थैला साथ में लेकर निकलें, जूस पीना हो तो बिना स्ट्रॉ के या फिर अपनी मेटलिक स्ट्रॉ साथ में लेके जाएं। शादियों में और पार्टियों में प्लास्टिक के ग्लास और प्लेट्स की जगह इको फ्रेंडली बर्तनों का यूज करें। अपने साथ अपनी स्टील की या कांच की बॉटल साथ में जरूर कैरी करें। दोस्तों बदलाव बड़ा है पर शुरुआत बहुत ही छोटी सी है। दोस्तों हमारा जो पर्यावरण है इसे बचाना सिर्फ सरकार या एनजीओ का काम नहीं है, ये हम सब का दायित्व है, और हमारा छोटा सा कदम इस पूरी धरती को हरा भरा बना सकता है। तो दोस्तों चलिए यही खत्म हुआ हमारा सेगमेंट चर्चा, जिसमें हमने बात की मिशन लाइफ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कहें ना पर। तो चलिए सुन लेते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से। आवाज है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की, गीत है गुरप्रीत का और संगीत है रोचक कोहली और अली सेठी का।

से गाने के बाद चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट व्यक्ति विशेष की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे कंदुकुरी वीरेसलिंगम पंतुलु की, जिन्होंने समाज को नई सोच दी, महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ डटकर खड़े रहे। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। वीरेसलिंगम जी का जन्म 16 अप्रैल 1848 को राजमहेंद्री में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब वे 4 वर्ष के थे तब उनके पिता सुब्बा रायुडू का निधन हो गया। माँ ने अकेले संघर्ष करते हुए वीरेसलिंगम जी को पाला। गरीबी थी लेकिन संस्कार और शिक्षा का वातावरण भी था। गंभीर आर्थिक तंगी के बावजूद वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। वे तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे। वीरेसलिंगम जी बचपन से ही तार्किक सोच के थे। उनकी पढ़ाई में असाधारण रुचि थी। वे अंधविश्वासों पर सदैव ही सवाल उठाते रहते थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें एक क्रांतिकारी विचारक बनाता है। 1861 में 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह बोपम्मा राज्यलक्ष्मी से हुआ, जो सिर्फ इनके जीवन साथी ही नहीं बनी बल्कि जीवन संघर्ष की साथी भी बन गई। वीरेसलिंगम जी ने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वे केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम बनाया। वे ब्रह्मो समाज से प्रभावित थे, जिसने उनके विचारों को और प्रगतिशील बनाया। वीरेसलिंगम जी ने इस बात की पुरजोर वकालत की कि समाज तभी समृद्ध हो सकता है जब महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए प्रारंभिक भारतीय सभ्यताओं में महिलाओं की उच्च स्थिति को सिद्ध करके रूढ़िवादी विरोधों का खंडन किया। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए, जिसकी शुरुआत 1874 में डोलाईस्वरम में एक स्कूल से हुई। साथ ही उन्होंने एक पुनर्विवाह संघ का भी गठन किया और 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश में पहले विधवा पुनर्विवाह का आयोजन किया। उन्होंने हिंसक धमकियों और तीव्र जनविरोध के बावजूद लगभग 40 विधवाओं का विवाह सफलतापूर्वक

पूर्वक संपन्न कराने में मदद की। उन्होंने बाल विवाह, जाति व्यवस्था, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। वीरी सिंघम जी एक सक्रिय राष्ट्रवादी थे और उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ब्रह्म समाज आंदोलन से अत्यधिक प्रेरित होकर उन्होंने 1887 में राजमुंद्री में पहला ब्रह्म मंदिर भी बनवाया और 1908 में उन्होंने हितकारिणी स्कूल और हितकारिणी समाज की स्थापना की और अपनी सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए और अपनी संपूर्ण व्यक्तिगत संपत्ति और जायदाद उन्होंने दान कर दी। वीरेश लिंगम जी केवल समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक महान लेखक भी थे। उन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साहित्य को केवल राजाओं की प्रशंसा से निकालकर समाज के आम मुद्दों से जोड़ा। उन्होंने राजशेखर चरित्रमु उपन्यास लिखा जिसे तेलुगु भाषा का पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है। साथ ही विवाह विधि, सत्यराज पूर्व देश यात्रालु, सत्यवती चरित्रमु और ब्रह्म विवाहम जैसी कृतियां भी लिखी। उन्होंने तेलुगु में पहली ऑटोबायोग्राफी, पहला नाटक और निबंध लिखने की भी शुरुआत की। उन्होंने 1876 में एक सामाजिक सुधार पत्रिका शुरू की विवेका वर्धिनी नाम से, जिसने भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों पर तीखे और स्पष्ट व्यंग किए। उनके अद्वितीय जन कल्याण और सुधार कार्यों के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1893 में राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। 1974 में भारतीय डाक सेवा ने उनकी अमिट विरासत को स्मृति स्वरूप देने के लिए अथक परिश्रम के साथ जो उनके एफर्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं दिखाने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया। वीरेश लिंगम जी ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए और अथक परिश्रम करते हुए व्यतीत किया और 27 मई 1919 को वीरेश लिंगम जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वे एक युगांतरकारी पुरुष थे जिन्होंने अपनी कलम और कर्म से तेलुगु समाज को आधुनिकता के रास्ते पर लाया। उनका जीवन आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, आज के व्यक्ति विशेष सेगमेंट में हमने बात की महान समाज सुधारक कंदुकुरी वीरेश लिंगम पंतुलु की। चलिए अब इसी के साथ सुन लेते हैं एक गीत जो हमने लिया है फिल्म हीर एक्सप्रेस से। आवाज है नक्श अजीज और हरजोत कौर की, गीत है श्लोके लाल का और संगीत है तनिष्क बागची का।

0: की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब थोड़े से एनर्जाइज हो जाइए क्योंकि हम डुबकी लगाने वाले हैं खेल संसार में और जानेंगे पूरे हफ्ते की स्पोर्ट्स अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन 2026 में भारत का प्रदर्शन संतुलित और मजबूत रहा। पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली और वहीं डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच चुकी है। चलिए अब करते हैं बात कुश्ती की और एशियन अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा। मोहित कुमार और चंदेर मोहन ने फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ग्रीको रोमन वर्ग में सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह फाइनल्स में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर चुके हैं। बढ़ते हैं ऐसे खेल की ओर जहां ताकत नहीं दिमाग लगता है और अगला खेल हमारा है चेस। नॉर्वे चेस 2026 में भारत के युवा खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। 25 मई से 5 जून 2026 तक ओस्लो नॉर्वे में चलने वाले टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने राउंड वन के मुकाबले जीत कर अच्छी शुरुआत की और विमेंस राउंड में दिव्या देशमुख ने राउंड वन और राउंड टू दोनों दिन ही जीत दर्ज की। चलते हैं फुटबॉल ग्राउंड में जहां सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि 25 मई से 6 जून तक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में चल रहा है। भारत ने ग्रुप बी में मालदीव्स को 11-0 से हराकर बड़ी जीत हासिल की। अगला जो मैच होना है वो श्रीलंका वर्सेस भूटान का होगा, साथ ही बांग्लादेश वर्सेस मालदीव्स का मुकाबला भी कल 28 मई को होगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी की तरफ चलते हैं और हॉकी अंडर 18 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले कड़े रहे। पुरुष टीम ने 3-3 से ड्रॉ खेला जबकि महिला टीम ने 4-1 से जीत दर्ज की। टेनिस में यूकी बाम्बरी और माइकल वीनस की जोड़ी जेनेवा ओपन 2026 में फाइनल्स तक पहुंची, हालांकि उन्हें कड़े मुकाबले में उपविजेता रहना पड़ा और चैंपियन बने रोमेन अर्नेडो और मार्क पालमोंस। एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में बात करते हैं, भारत की जो भी एथलीट्स थे इन्होंने इतिहास

रच दिया। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर में 10.09 सेकेंड्स का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं विशाल टीके ने 400 मीटर में 44.98 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया और 45 सेकेंड से नीचे जाने वाले पहले भारतीय बन गए। साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आर एशिया एंड ओशेनिया चैंपियनशिप जो 23 से 24 मई 2026 को जापान के हिरोसाकी शहर में आयोजित हुई, यहां अमर सिंह देवांडा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर दौड़कर स्वर्ण पदक जीता और जीनो एंटोनी ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता, साथ ही तेंजीन डोलमा शीर्ष भारतीय रही। चलिए अब बात करते हैं फैंस फेवरेट क्रिकेट की। तो देश में चल रहा है आईपीएल प्रीमियर लीग का, मतलब आईपीएल चल रहा है जो है इंडियन प्रीमियर लीग, इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और अब फाइनल्स के दिन भी आने को है। तो इसी हफ्ते शुरू हो चुका है प्लेऑफ भी। तो 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हुआ जिसे केकेआर ने 4 विकेट से जीता। 21 मई को गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसको जीता। उसके बाद बात करते हैं 23 मई की। 23 मई को पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा कर जीत गई पंजाब किंग्स। 24 मई 2026 को राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया और दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हराया। और 26 मई यानी कल से शुरू हुआ प्लेऑफ। पहले क्वालिफायर राउंड में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में हुआ जिसे 92 रन से जीतकर आरसीबी ने फाइनल्स का टिकट कटा लिया। आज 27 मई को चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे एलिमिनेटर राउंड होगा जहां सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आपस में भिड़ेंगे और आईपीएल का फाइनल मुकाबला 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इस हफ्ते के खेल जगत से जुड़े हुए सारे के सारे अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। साथ ही चलिए अब बात कर लेते हैं कि आजकल की जो हीट वेव्स चल रही हैं इनकी। आजकल हीट वेव्स सच में बहुत ज्यादा चल रही हैं। तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो रहा है। इस दौरान जब शरीर अत्यधिक गर्मी होने के कारण अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो हम लू के या फिर हीट स्ट्रोक के शिकार बन जाते हैं, जिसके लक्षण होते हैं तेज सिर में दर्द होना, चक्कर आना, अत्यधिक प्यास लगना और शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाना यानी पानी की कमी हो जाना, त्वचा का लाल, गर्म और सूखा पड़ना, साथ ही कमजोरी आना, उल्टी होना, मांसपेशियों में ऐंठन और जी मिचलाना। इस दौरान दोस्तों हमें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और शरीर को सुरक्षित करने के लिए समय समय पर पानी पीते रहना है। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। भरपूर पानी पिए, ओआरएस का घोल, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, आम पन्ना का सेवन जरूर करें। साथ ही चाय, कॉफी या एक्स्ट्रा शुगर वाली जो ड्रिंक्स है ना, इनको लेने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि हमारी जो एक्स्ट्रा शुगर वाली ड्रिंक्स होती हैं ये कहीं ना कहीं पानी को सोखती हैं, इसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकलें। यदि आवश्यकता पड़ रही है और धूप में जाना पड़ रहा है तो लगातार काम करने से बचें। साथ ही छाता, टोपी, चश्मा, हल्के रंग के और सूती कपड़े जरूर पहने। दिन में घर की जो खिड़कियां हैं और पर्दे हैं इनको बंद रखें और रात में हवा आने के लिए इनको खोल दें। कूलर और एसी का सही से इस्तेमाल करें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा और खीरा इनको खाएं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो लू की वजह से या फिर अत्यधिक बीमार हो गए हैं तो उन्हें तुरंत किसी ठंडी या छायादार जगह पर बिठाएं, गीले कपड़े से उनके हाथ पैर पोछें। अगर वो होश में हैं तो उन्हें धीरे धीरे पानी पिलाएं या फिर ओआरएस का घोल दें। यदि हालत में सुधार आपको ना दिखे तो बिना देरी के नजदीकी अस्पताल में पहुंचाएं। दोस्तों इस समय जरूरी है कि हम मौसम विभाग की चेतावनी पर जरूर नजर रखें और अत्यधिक गर्मी के दिनों में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। चलिए अब माहौल को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट और सुन लेते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म यारियां 2 से। आवाज है अरिजीत सिंह और मनन भारद्वाज की। गीत और संगीत है मनन भारद्वाज का।

वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले बता दे कल के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। कल है सजीव फोन इन कार्यक्रम युवा संवाद, जिसका विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व, जिससे आप जुड़ सकते हैं और अपने विचार दे सकते हैं 73 76 80 40 90 पे कॉल करके। तो अब दीजिए अपनी दोस्त मंजली सिंह को इजाजत। नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी देश के विकास में सहभागी बने

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या।

0: हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे, अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर,
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: लोक संगीत कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सबसे पहले सुनते हैं पूर्वी पारंपरिक गीत हीरालाल यादव और साथियों की आवाज में।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYAAKASHVANI@

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात,
2: श्रोताओ आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें जो आजकल मौसम चल रहा है वो है हीट वेव का। इसमें अपने स्वास्थ्य को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हीट वेव के लक्षण क्या होते हैं, जैसे गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना, पसीना न आना, पल्स आपकी तेज हो जाना, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति होती है, सिर दर्द, मितली, थकान, कमजोरी होना, चक्कर आना, मूत्र न होना या कम होना, ये सब सारे जो लक्षण है वो हीट लगने के या हीट स्ट्रोक के होते हैं। हीट स्ट्रोक से जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ता है वो उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों में विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है तथा शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। मनुष्य के हृदय के कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40.6 डिग्री सेल्सियस यानी 105 डिग्री फारेनहाइट से अधिक तापमान या गर्म हवा में रहते हैं तो उनके मस्तिष्क की क्षति होने की संभावना प्रबल होती है। तो इसके लिए हमको बचाव करना है। क्या करना चाहिए? प्रचार माध्यमों पर हीट वेव या जो लू की चेतावनी दी जाती है उन पर ध्यान दें, अधिक से अधिक पानी पिए, हल्के रंग के पसीने सोखने वाले वस्त्र धारण करें, धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का प्रयोग करें। अगर आप खुले में काम करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ पैर गीले कपड़ों से ढककर रखें और छाते का उपयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पीछे और आगे नहलाएं और चिकित्सक से परामर्श करें। यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ अवश्य रखें। ओआरएस, घर पर बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग भरपूर मात्रा में करें कि जिससे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए और जो कम हुआ है वो पानी उसकी भरपाई हो सके। पंखे और गीले कपड़ों का उपयोग करें, बारंबार स्नान करें। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प्स जो लक्षण

होते हैं उसमें कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, उकाई, पसीना आना, मूर्छा इत्यादि की स्थिति हो सकती है, या अगर आप इसका अनुभव करते हैं तो अपने चिकित्सक से तुरंत सलाह लें। अपने घरों को ठंडा रखें, पर्दे दरवाजे आदि का उपयोग करें। शाम रात के समय घर और कमरों को ठंडा करने के लिए जो है पर्दे और दरवाजे खोल दें। सूरज के तापमान से बचने के लिए जहां तक भी संभव हो घर की निचली मंजिल पर ही रहें। अपने काम के स्थल पर पीने का ठंडा पानी रखें। लोगों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें। श्रम साध्य कार्यों को ठंडे समय में करने का प्रयास करें। घर के बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समय अवधि तथा आवृत्ति को बढ़ाएं और गर्भस्थ महिलाओं और रोगग्रस्त लोगों पर अतिरिक्त ध्यान दें। क्या न करें इसके बारे में भी बात करते हैं। जानवरों और बच्चों को कभी भी बंद और खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़िए। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य सूरज की रोशनी में जाने से बचें। गहरे रंग के, भारी रंग के और तंग कपड़े न पहने। जब बाहर का तापमान अधिक हो तो जो आप श्रम साध्य काम करते हैं उन्हें न करें। अधिक प्रोटीन और बासी संक्रमित खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन न करें। कोशिश करें कि चाय कॉफी से भी बचें और अल्कोहल यानी शराब से परहेज करें। तो श्रोताओं, ये तो बातें थी हीट वेव से संबंधित, जिनको आपको अपने ध्यान में रखना है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत जयचंद सिंह और साथियों की आवाज में, ये किसानी गीत।

कार्यक्रम में सुनते हैं ये श्री राम गीत जयराम द्विवेदी और साथियों की आवाज में।

0: श्रोताओं, इसी निर्गुण के साथ ही हमारा आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम FM बैंड 101.9 पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है।

0: उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा फेयर प्राइस शॉप्स है, उसमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सकती है 9695375076। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम शाम सुहानी।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के

फिल्म आशिकी से सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज है। समीर के लिखे इस गीत को नदीम श्रवण ने संगीत दिया है।

कार्यक्रम शाम सुहानी में भी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम था आशिकी। कार्यक्रम में अब एजेंट विनोद फिल्म का गीत सुनते हैं। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया प्रीतम ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही शाम सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै 30,25,000 crore rupees केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्यसंस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिम मेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिम मेधा चालितः वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरण मञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिम मेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तंत्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या राज्यांतर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढः निर्णयः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचन आयोगेन प्रदत्त मतदातृ सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः 50-21-3300 अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेष गहन पुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम्। यासु गतवर्षे जून मासे निर्वाचनायोगेन बिहार राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेष पुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्य पुनरीक्षणस्य पारंपरिक प्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय संदेशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासित जनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमन्त्री सर्वानेतेषु कष्टकर दिनेषु परस्परं करुणा प्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov

0: संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्य भूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजसः हर्षदकुमारशाहः वर्तते, यः पुणेनगरस्य डॉक्टर अभङ्गप्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्, यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः, अंकीयसङ्गणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीय विचारैः, नवोन्मेषेण, परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः, संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य, अधिक सशक्तस्य, पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तन्त्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं 7:30 समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 पराजितम्। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।

मध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

गूंजे स्वर्गों के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में सुनते हैं ये रसिया गीत कल्पना एस बर्मन और साथियों की आवाज में।

0: सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनाते हैं ये पूर्वी झूमर गीत रामचंद्र दुबे की आवाज में।

0: कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान

0: प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: पंचो जय हिंद। देखा भैया गर्मी कितना चरम पर है। अपने सबका अपने स्वास्थ्य बदे बहुत सतर्क रहे के चाहिए। कहे से अपने सब स्वस्थ रहे तब हर कार्य ताई अपने सब हमेशा तैयार रह सके थे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया रहा। स्वच्छ भारत मिशन भारत में स्वच्छता के पुनर्जागरण के नेतृत्व करत है। अपने सभी का चाहिए कि अपने आसपास गली मोहल्ला ग्रामीण क्षेत्र हर कहूँ साफ सुथरा रखे के चाहिए। ये जब साफ सफाई रहे ना तब अपन सभी स्वस्थ रहे। हर घर में शौचालय के प्रयोग करे के चाहिए। अपने घर के कूड़ा कचरा का सही स्थान पर निस्तारण करे। दुआरे मुहारे कूड़ा ना एकत्र करे। अक्सर देखा जाता है कि मनी आपन घर तो साफ कर लेते हैं मुला जोन है ये कूड़ा कचरा कहूँ एकत्र कर देते हैं। खेती में देसी खाद के जैविक खाद के ही प्रयोग करे। देसी खाद से आपन जोन फसल है उसके उत्पादन क्षमता भी बढ़े और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पालो अपने सबका लगावे का है एक ही जोन से कि अपने चारों ओर हरियाली बनी रहे। हरियाली से आपन पर्यावरण तो स्वच्छ रहबे करे और अपने सबका शुद्ध हवा मिले। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के यही उद्देश्य है कि अपने साथे साथ अपने चारों ओरिया के पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। ऐसे अपने चारों ओर के सौंदर्यता तो बढ़वे करे और अपने सभी के स्वास्थ्य में ई बढ़िया प्रभाव डालत है और स्वस्थ रहे के ताई ई भाई बहुत जरूरी है। अपने सब का वनों के कटाई पे रोक लगावे का है ओका नाई काटे का है। अपने जीवन के सुरक्षा के साथे साथे जो अपन वन्य जीव हैं उनके भी सुरक्षा के अत्यधिक आवश्यकता है। वह जिम्मेदारी अपने सबका है। कहे से कि पर्यावरण बदे हर जीव जंतु का जीवन भी अनमोल है। आज पशु पक्षी के जीवन भी बहुत संकट भरा है। मन ही अपने आवश्यकता और भौतिक सुखताई पेड़ पौधा तेजी से काटत है। ऐसे अपन पर्यावरण असुरक्षित है। अपने सबका ई ध्यान देवे के चाहिए कि पेड़ पालो भाई जीव जंतु के ताई बहुत जरूरी है और अपने स्वच्छता ताई भी बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण स्थान है ये जोने मा भी जीव जंतु राहत हैं उनके स्थान का भाई अपने सब कोनो मेर से नुकसान ना पहुंचाए। मनुष्य अपने जीवन मा ये तरह से खुदे संकट लावत है। आज चील कौआ इस पक्षी जोने की कहा जात रहा ना कि ये सफाई कर्मी है अपने पर्यावरण के स्वच्छता के ताई ये बहुत जरूरी है। मुला इनके भी गिद्धाएं इनके संख्या धीरे धीरे कम हो जाता है और ये सब अपने सबके ही देन है कि मने अपने सुख सुविधा ताई भौतिक सुविधा ताई जल्दी से जल्दी पेड़ पालो काट के भाई आपन बसेरा कर लेते हैं। मुला ई जीव जंतु कहाँ जाइए जो अपने पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़त है। अगर ई जंतु न रहिए तो आपन जीवन भी संकट में रहें। कहा गवा है ना कि स्वच्छता स्वास्थ्य के पहली कुंजी है। अपने सबका चाहिए कि ना गंदगी करे और ना केहू का करे दे। हर सार्वजनिक स्थान घूमे टहरे जाए मुला हुआ के सफर करे समय ई जरूर ध्यान दे कि भाई दूसर केहू भी हुआ आए के वह स्थान के प्रयोग करे। तो यह लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। ये हमेशा जोन भी कूड़ा कचरा है खाए पिए वाला है वो कूड़ा कचरा है वह का सही जगह पर निस्तारित करे। कूड़ेदान का प्रयोग करे। ये अपने सब है जोन बेकार की चीज होता है वो का कहाँ रखे का कहाँ डारे का है जोने से कि दूसरे का उसे नुकसान ना हो और आपन पर्यावरण सुरक्षित रहे। जब साफ सुथरा रहिए हर स्थान तो अपने सबका भी भाई देखा खुशी मिलत है कि साफ सफाई से ही अपन जीवन खुशहाल रहे। अपने घर की तरह हर कार्यालय होए विद्यालय होए गली नदी ताल पोखरा नाली के साफ सुथरा रखे का है ये जोने से कि अपन पर्यावरण बना रहा है। अपन पर्यावरण जब शुद्ध रहे तब अपने सब शुद्ध हवा में सांस ले सके थे। हर मौसम के सही समय पे अपने सबका अगर भाई ये जो ने ले का है कि हर मौसम के आनंद अपने सब ले ही और अपने स्वास्थ्य पे बढ़िया प्रभाव पड़े। यह लिए अपने सबके दायित्व है कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई

0: रखे। अगर हर घर साफ सुथरा रहे, हर गली मोहल्ला गांव साफ सुथरा रहे तो अपन भी स्वास्थ्य बढ़िया रहे। काहे कि गंदगी से ही अपन स्वास्थ्य बिगड़त है और फिर भैया अपने सब डॉक्टर भैया के लोग के पास जाए में मजबूर हो जाते। ये लिए हमेशा तैयार रहे कि साफ सफाई बहुत जरूरी है अपने जीवन बदे और अपने स्वास्थ्य के ताई यह मौसम में भाई विशेष ध्यान देखा है। है अपने किसान पंचन का चाहिए कि जौन भी खेती करते हैं बढ़िया उत्पादन ताई देसी खाद के ही प्रयोग करें। देसी खाद, कंपोजिट खाद और सड़ी भय गोबर के खाद के ही प्रयोग करें, तब में बढ़िया से उत्पादन अपने सबका मिले और अगर उत्पादन बढ़िया मिले तो भाई देखा अपने सबके आर्थिक आमदनी भी बढ़िया हुए। तो यह बदे एक तो देखो बत कही लेके आए हैं किसान उत्पादक संगठन कुछ महत्वपूर्ण बातें जगह बतावत हैं श्री अरुण कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड रुदौली अयोध्या से और उनसे बतवाए हैं राम प्रकाश पांडे भैया। तो चलो इन्हीं से जाना जाए।
1: पंचो आज अपने बीच में है ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड रुदौली अयोध्या से अरुण कुमार वर्मा भैया। इन्हीं से अपने सब जानबे ना किसान उत्पादक संगठन कुछ महत्वपूर्ण बात। तो सबसे पहले तो वर्मा भैया आपका मेरी पंचायती में स्वागत है और आपसे हम सबसे पहले यह जानना चाहते ना कि जैसे मैंने कहते हैं कि अपने देश के धुरी किसान है।
2: जी जी जी
1: है कि नहीं?
2: जी जी जी
1: बिना किसान के या बिना अन्न के कोनो चीज संभव ना है।
2: एकदम नहीं, एकदम
1: है कि नहीं?
2: जी जी।
1: तो किसान उत्पादक संगठन का एक का महत्वपूर्ण भूमिका है कहे पंच भैया का आपस में मिल के कोनो काम करे कहे पूरा नहीं करे ना संगठन में शक्ति है।
2: शक्ति है
1: तो किसान उत्पादक संगठन के काहे जरूरत है?
2: सबसे बड़ी जरूरत इसकी ये है पड़ी कि अगर किसान जब अलग अलग काम करता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। तो उत्पादन लागत बढ़ गई तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता।
1: बिल्कुल सही कहें जैसे कि तीन जने बाजार जाते बारी बारी और वही इक्के जने चला गए ना दो जने खेते में काम करते ही तो अपन बचा ना लागत जो ना आप कहें कि जाए वाला आइए अकादमी गवा सबका हिस्सा बेच के चला
2: चलाया
1: चार जने मिल के जो काम करब वो ज्यादा अच्छा दे। जी
2: हाँ, अच्छा। जी। तो इसी पर जो है एक समान काम करने वाले किसान को एक मंच पर इकट्ठा किया जाता है कि वो एक ही प्रकृति के किसान हो और उनका जब एक ग्रुप बनाया जाता है
1: जी।
2: तो उनकी लागत कम हो जाती है, उनको सुविधाएं जो है आसानी से मिल जाती है और उनका मार्केट और उत्पादन दोनों आसान और कम लागत में हो जाता है।
1: बिल्कुल जैसे आप कहीं संगठन कौन संगठन बनाते हैं दस मनई की जरूरत पड़ा
2: जी जी
1: कई मनई मिल के बना सकते का हमार लागत है कैसे बना सकते ये पंच का बताऊं।
2: सबसे ज्यादा जरूरी चीजें इसमें ये है कि दस लोग जब एक प्रकृति के एक ये टाइप के खेती करने वाले
1: लक्ष्य हाँ,
2: एक लक्ष्य रहे इसमें खेती में तमाम विविधता है। कोई मछली पालन करता है, कोई मुर्गी पालन करता है, कोई गौ पालन करता है, कोई धान गेहूं की खेती करता है,
1: लेकिन सबका मतलब है कि इनकम
2: इनकम सबका मतलब है इनकम आय कहाँ से आय कहाँ से मतलब किया जाए। जो हर वैरायटी के जो लोग हैं वो उसी टाइप से एक एम निर्धारित कर लें कि हमें क्या करना है।
1: जी
2: जो खेती से संबंधित काम है डेयरी है तो डेयरी वाले एक मंच पर आ जाएं, सब्जी वाले एक मंच पर आ जाएं, गौ पालन वाले और जानवर वाले वो एक जगह पर आ जाएं।
1: जी
2: तो इस टाइप से जब वो अपना एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है वो जब
1: किसान उत्पादक संगठन
2: जब रजिस्टर्ड कराएंगे तो उनको जो प्रशिक्षण मिलेगा गठन के बाद में सरकार से अनुदान मिलेगा तो ये सब लाभ धीरे धीरे उनको एक मजबूती प्रदान करेगा।
1: ये वर्मा जी जो प्रशिक्षण मिले निःशुल्क है क्या पैसा दिए?
2: नहीं नहीं इसका तो एकदम निःशुल्क है। जिस विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस विभाग की जिम्मेदारी है कि इनको अनुदान और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए।
1: कुछ चीज में देखते रहे इनके सेक्रेटरी भैया जैसे महिला स्वयं सहायता समूह तरह तमाम चीज आप सबके माध्यम से बनता रहा।
2: जी जी
1: लेकिन ई उत्पादक संगठन किसान वाला
2: जी जी
1: कैसे बना?
2: इसको बनाने के लिए थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है। दस लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं चाहे जिस काम से तो इकट्ठा होंगे मीटिंग करेंगे। न्यूनतम सदस्य संख्या उनकी 10 होनी चाहिए।
1: अच्छा और अधिकतम
2: अधिकतम वो 300 150 200 जितना विस्तार कर लें क्योंकि इनको बड़ा काम करना है।
1: जी
2: तो इनको सदस्य पर मैक्सिमम 300 लोगों को अपना ये जोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया इनको शुरू करने से पहले
1: जी
2: एक बैठक करें उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। ये थोड़ा सा पेपर वर्क इसमें ज्यादा है।
1: अच्छा
2: इसमें 10 लोगों को अपना आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट साइज की फोटो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इतना जो है अपना इकट्ठा करके
1: बैंक वाली पासबुक
2: बैंक

0: वाली पासबुक की जरूरत अभी नहीं है।
1: अच्छा,
0: इसमें इतना इकट्ठा करके अपने सीए के पास जाना पड़ेगा इनको।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये काम थोड़ा सा अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर पाएगा या सीएस कर पाएगा।
1: अच्छा,
0: कंपनी सेक्रेटरी। तो ये जो है इनको मीटिंग करने के लिए कहेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो है सीए के पास जमा हो जाएगा। अब सीए अपनी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगा
1: जी,
0: सबका अकाउंट बनाएगा, फिर डिजिटल डीएससी डिजिटल सिग्नेचर जो है इनका बनेगा,
1: पेन ड्राइव
0: टाइप से।
1: अच्छा।
0: तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर जब अप्रूव हो जाएगा तब ये 10 लोग जो है उसके मेंबर हो जाएंगे। इसमें से 5 लोग जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे।
1: अच्छा।
0: और 5 लोग जो मेंबर होंगे।
1: तो पूरी कंपनी खड़ी होगी,
0: पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी का एक नाम रखेंगे ये। उसी के नाम से जब रजिस्टर्ड हो जाएगी सीए के माध्यम से, तब जो इनको सर्टिफिकेट मिलेगा उसी आधार पर बैंक में इनका खाता खुल जाएगा।
1: अच्छा।
0: अब जब बैंक में खाता खुल जाएगा तो जो इनकी अपनी सदस्यता शुल्क है, इसको कह लीजिए कि शेयर, कि 10 मेंबर मिल करके कितना कंपनी में शेयर लगाए, कोई 50,000 भी लगा सकता है, कोई 10,000 भी लगा सकता है, तो उसी हिसाब से उसका अंश रहेगा उस कंपनी में।
1: अच्छा।
0: लाभ मिलेगा तो उसी हिसाब से उसको लाभांश भी मिलेगा। अब जब इनका खाता खुलने की स्थिति तब आएगी जब इनका रजिस्टर्ड सीए के माध्यम से कंपनी का रजिस्टर्ड हो जाएगी
1: जी,
0: प्रमाण पत्र मिलेगा, तब ये बैंक में अपना जाकर खाता खुलवाएंगे। खाता खुलवाएंगे तब इनको जरूरत पड़ेगी जीएसटी की, क्योंकि अच्छा। अब तो ये उत्पादन किए और मार्केट में पहुंच गए।
1: हाँ।
0: अब इनका वही कंपनी जो है इनकी अथोराइज्ड हो गई कि अपना मार्केट में सामान डायरेक्ट बेच सकती है, और हर विभाग में इनका रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे जिस विभाग से संबंधित इनका बायलाज है तो उसी हिसाब से इनका रजिस्टर्ड हो जाएगा एग्रीकल्चर विभाग में, वहीं पर प्रशिक्षण मिल जाएगा, इनको लाइसेंस मिल जाएगा, अनुदान मिलेगा सरकार द्वारा, और इनको जैसे अगर खेती से संबंधित अगर ये कोई एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनको लोन में 12 लाख रुपए अनुदान मिलता है।
1: अच्छा।
0: 4 लाख रुपए के लगभग जो इनकी पूंजी लगती है, जो इनका संगठन है उसकी।
1: यानी किसान अगर करा चाहे तो कोनो भी काम कर सकते हैं, लेकिन संगठन बना करके
0: है।
1: अब पैसा की कमी नहीं,
0: पैसा की कोई कमी नहीं है। जितना इनका सीए जो है, जो इनका रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट लेंगे ये, तो उसकी ये रिपोर्ट बनाएंगे कि वो कितने कास्ट की है, तो उसमें इनका 90% तक अनुदान है।
1: बिल्कुल सही बात के दिन जोन पंच भैया आपको पहली बार रेडियो पे सुनता है
0: जी जी,
1: उनके मन में आवता है कि हमें नहीं बनावे का, हम 10 जने एक खान नहीं, हमारे 10 जने के मत मिलत है
0: जी जी जी,
1: वो पहले कैसे संपर्क करें, कैसे कहा जाए?
0: वो सबसे पहले तो एक काम करें कि अपना खुद बैठक कर लें।
1: अच्छा।
0: कि हमको ये काम करना है और डिसाइड कर लें कि हमें जो है इस तरीके से ये काम, चूंकि 1-2 महीने का काम नहीं है, ये काम जो है ये लगातार जैसे जैसे करते जाएंगे कंपनी की ग्रोथ होती जाएगी।
1: अच्छा।
0: बैठक करने के बाद में ये अपने एक सीए से संपर्क करें, और सीए से जब संपर्क करेंगे तो ये इनको रजिस्टर्ड तक ये पहुंचा देगा
1: जी।
0: मतलब इसमें शुल्क भी लगता है, मतलब पहले तो 5,000 में हो जाता था, लेकिन इस समय 15,000 रुपए में फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप जो है ये बन जाएगा इनका।
1: बिल्कुल। अब पंच भैया बनाता है, जैसे आप बताएं फायदा है, मान लिया मैं पंच भैया सब्जी वाले उत्पादन की तय करता है या डेयरी तय करता है, तो कैसे यहाँ शुरुआत करें, का ध्यान दिए?
0: अगर ये अपना प्रोजेक्ट चाहे डेयरी पर ले लें, चाहे सब्जी पर ले लें, चाहे फल पर ले लें, चाहे कोई और कृषि से संबंधित उत्पाद ये बनाए, जैसे अचार भी है या अगरबत्ती भी है या कोई भी चीज इससे शामिल कर सकते हैं, और इसका ये रजिस्ट्रेशन जो है जिला कृषि अधिकारी के यहाँ जो है इनका रजिस्टर्ड हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसमें एक चीज और है कि जब ये जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये किसान है कि नहीं, समस्या इनकी यहाँ पर आती है साबित करने के लिए। जमीन तो पिताजी के नाम होती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब ये जमीन पिताजी के नाम होती है तो अब इनको कैसे साबित करना है कि हमारे नाम तो खेतौनी है नहीं, अब पिताजी की, या तो पिताजी का नाम से अपना ये संगठन में अपना मेंबर बने, लेकिन ये संभव नहीं है अपने यहाँ।
1: बिल्कुल।
0: जो एज का डिफरेंस रहता है।
1: हाँ।
0: तो इसके लिए ये एडीओ एजी के यहाँ या जिला कृषि अधिकारी के यहाँ एक एप्लीकेशन देंगे, वो अपना इनका पैतृक जमीन दे करके इनको जो है प्रोड्यूसर किसान के रूप में ये इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
1: यानी इनके पिताजी के पास इतनी जमीन है, करे वाले जैसे मालिकाना हक,
0: मालिकाना हक हाँ मिलता था, तो वैसे इनको एग्रीकल्चर से मान लिया जाएगा कि खेती करते हैं और उत्पादन करते हैं।
1: बिल्कुल। यानी कहा का मतलब है पंच के सिर्फ सोचे भरे दिए, सरकार साथे खड़ी है, और उत्पादन जितना भी करिए के मार्केट में लेके तैयारी है
0: एकदम पूरा जो है।
1: कौन ये सुधारण आपके निगाह में आवत हुए कि उत्पादक संगठन रहा, खूब आगे चला, अगर आपके मन में?
0: हमारे एक मित्र है इस समय, वो अभी 1 साल हो गया
1: जी,
0: वो खेती किसानी से संबंधित यही अपना ग्रुप बनाए हैं,

0: वो इस समय डिप्टी डायरेक्टर यहाँ है।
1: अच्छा,
0: रजिस्टर उनका होने जा रहा है। उनको 16 लाख रुपए का कृषि यंत्र के लिए, फार्मर यंत्र, यंत्र जैसे कि बैंक जो जिसमें कृषि से संबंधित सारे यंत्र उनके पास रहेंगे
1: जी,
0: आवेदन हो चुका है। अब उनको जो है वो 16 लाख रुपए का उसमें ऋण रहेगा, जिसमें 12 लाख रुपए की सब्सिडी रहेगी।
1: कृषि भवन जो उपनिदेशक कृषि,
0: हाँ, यहीं से
1: यही हुआ तो यही, भैया का तो ही पता है कि जिला कृषि अधिकारी और कृषि भवन में बहुत अंतर,
0: बहुत अंतर नहीं है,
1: बस बगल बगल दोनों है,
0: दोनों
1: पंच भैया का सिर्फ सोच के जाएगा
0: जाएगा।
1: चलो चलो जो पंच भैया आपका रेडियो सुनता उनसे आप कहा कहा,
0: हम तो ये कहेंगे कि सारे किसान यूनाइट हो और अपना एक संगठन बनाए और अपनी जो लागत है उसको कम करें और अपने स्तर में सुधार के लिए जो है ये संगठन बना करके और ई कॉमर्स और जो गवर्नमेंट का लाभ है उसको उठाएं।
1: बिल्कुल, यानी कहा मतलब है कि जो काम अकेले ना कर पाया
0: जी, जी,
1: अगर चार जने मिलके करा चाहता
0: जी, जी,
1: तो यह ऐसा सबसे अच्छी व्यवस्था है कि किसान उत्पादक संगठन बनाओ
0: जी, जी,
1: और जैसे आप बताएं कि जे करता है उनसे मिल लिया या कोनो सीए भैया से
0: जी, जी,
1: कंपनी सेक्रेटरी से है कि नहीं
0: जी, जी,
1: या चार्टर्ड अकाउंट से
0: जी, जी,
1: मिल के अब अपने प्लान का बताओ।
0: बिल्कुल,
1: कि हम ये चीज करा चाहते
0: जी, जी, जी,
1: अब जहाँ चाह
0: वहाँ रहा।
1: बिल्कुल, ये पंच भैया अगर चाहिए तो कई नहीं है। आप रहे अरुण कुमार वर्मा भैया, ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड रुदौली अयोध्या से। किसान उत्पादक संगठन के बारे में जो महत्वपूर्ण बात रही एक बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी, जरूर हमारे पंच भैया किसान उत्पादक संगठन बनाए के खूब लाभ कमाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो भैया कितनी बढ़िया जानकारी रही किसान उत्पादक संगठन, कुछ महत्वपूर्ण बातें जेका बतावत रहे श्री अरुण कुमार वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड रुदौली अयोध्या से, और उनसे राम प्रकाश पांडे भैया कितना नीकी तरह से बताएं कि संगठन माँ या एकता माँ ही हर कुछ संभव है, कि सब कोई मिल के अगर जो है एक खेती करत है तो उसे बढ़िया लाभ होते हैं।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
2: पंच देखा भाई, आपन घर द्वार मुहार गांव घड़ी सब साफ सुथरा रहे, आपन नदी ताल तलैया साफ सुथरा रहे, तब भी कितना आनंद आवत है। ए तो चला यही पे गौ नहीं सुना जाए बब्बन निषाद उनके साथी के स्वर में।

देखो भैया, गौने ही अपने सब सुना गए और अपने पास जोन बाजार भाव है वो अपने पंजन का बचाव चली। चावल 3040 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा 2585 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2350 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द काली 9200 रुपए प्रति क्विंटल, चना देसी 6400, मसूर के भाव रहा 7125 रुपया, अरहर दाल 10900 रुपए प्रति क्विंटल।

आलू सफेद 710 रुपया, प्याज लाल 1200 रुपया प्रति कुंटल, टमाटर 1300 रुपया, लहसुन के भाव 7000 रुपये प्रति कुंटल, तरोई 2050 रुपया, खीरा 1600 रुपया प्रति कुंटल, बैगन 2200 और हरी मिर्च 3300 रुपया प्रति कुंटल, कद्दू के भाव 1400 रुपया प्रति कुंटल, अदरक 6850, शिमला मिर्च 2600 रुपया प्रति कुंटल, भिंडी 1800, लौकी 1600, करेला 1700, केला पका 2760 रुपया प्रति कुंटल, नींबू के भाव 7300 रुपया प्रति कुंटल, पपीता 2750 रुपया, सेब 11550 रुपया, अनार 7600 रुपया प्रति कुंटल, गुड़ बट्टी 5090 रुपया प्रति कुंटल और चीनी 4120 रुपया प्रति कुंटल। ये तो भाई रहा बाजार भाव जो अपने सबका मिला रहा। और अपने भाई देखा बताए दे कि मौसम किस करवट लेत है तो मौसम के जानकारी भी अपने पंचन का होइक चाहिए। कहे कि खेत खलिहान में भाई मौसम के विशेष महत्व है तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री जो उनके सामान्य से 2.5 अधिक है, न्यूनतम तापमान 26.5 जो उनके सामान्य से 0.5 अधिक है, आर्द्रता अधिकतम 79% और न्यूनतम 39%, हवा की गति 5.4 किलोमीटर घंटा और हवा के जो दिशा रहे दक्षिणी पश्चिमी, वर्षा बिल्कुल न होए। पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहे के संभावना है और वर्षा होए के बिल्कुल संभावना नहीं है। औसत तापमान सामान्य से अधिक रहे व पूर्वी पश्चिमी हवा के सामान्य व सामान्य से तेज गति से चले के संभावना है, जोने से कि उमस भरी गर्मी और उष्ण लू से राहत के आसार नहीं मिलत है। भाई देखा ये तो रही मौसम के जानकारी और बताए दे कि काल जोन है अपने पंचे सुनिए किसानवाणी। तो भाई समय ये कहत है कि अब आगे बात बत कही के समय नहीं है तो यही के साथ है गायत्री का दी अनुमति। जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। सभा में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको अवगत करा देते हैं आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। अब से थोड़ी देर बाद रात 8:15 पर आप सुनिएगा गीत गुंजन कार्यक्रम। महफिल गजल कार्यक्रम होता है रात 9:15 पर। 9:30 पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम होगा। अब बात करते हैं हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। तो सुबह 7:15 पर कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे। सुबह 7:30 पर अमृत कलश सुर संगम कार्यक्रम में सुगम संगीत सुनिएगा। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुबह 8:30 पर, जिसके अंतर्गत आज की बात का विषय होगा बीडी सावरकर जयंती, और साथ ही एक भेंटवार्ता सुनिएगा बच्चों में मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष विषय पर जानकारी। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव थापर और आपसे बातचीत करेंगे संजय धर द्विवेदी। सुबह 9 से सुनिएगा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, जिसके अंतर्गत आपको सुनवाए जाएंगे आपकी व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्मी गाने। 9:30 से कार्यक्रम हेलो अयोध्या होगा। सुबह 10 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे दिन में 12:30 से। दिन में 1 से कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जिसमें फेसबुक फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गीत होंगे। गीतांजलि कार्यक्रम दिन में 2:30 पर नारी जगत कार्यक्रम होगा, जिसमें कल आप सुनेंगे चर्चा स्वावलंबिनी योजना और ऑनलाइन दोस्ती में दिखाएं समझदारी। इस विषय पर साथ ही सुनिएगा गीतों भरी कहानी, जिसका विषय होगा स्वस्थ जीवन शैली। शाम 5 आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, जिसमें

आज के दौर में रेडियो का महत्व। कल शाम 5:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम होगा, शाम 6:10 पर शाम सुहानी, कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, और 6:45 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। कल रात 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन होगा, रात्रि 9:15 पर महफिल गजल कार्यक्रम होता है, और रात 9:30 से आप सुनेंगे हेलो अयोध्या कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, FM एंड 101.9 पर। अब से थोड़ी देर बाद 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: एस के दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में

0: चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है।
2: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न

0: कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
1: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
2: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: FM बैंड 101.9 पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: आवाजें मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और सपना मुखर्जी की। विश्वात्मा फिल्म का गीत आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीतकार विजू शाह।

राग रागेश्री पर आधारित स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की, संगीत आदि नारायण राव का, आवाज लता मंगेशकर की। और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में शहनाई फिल्म का गीत जो राग पीलू पर आधारित है। बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीतकार रवि।

और अब श्रोताओं, राग गारा पर आधारित अभिमान फिल्म के गीत की बारी है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

आज के राग अनुराग कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत राग भैरव पर आधारित है। अनुराग फिल्म से गीत हमने चुना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत SD बर्मन का, आवाज लता मंगेशकर की।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।
1: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
2: यहाँ आओ।
1: हाँ,
2: योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगी।
3: ओह नो,
1: ओह यस।

0: मैंने देखा ही नहीं।
1: डार्क हो गई थी।
0: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
1: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
0: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
1: ये लो।
0: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
1: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
0: कहाँ की भी, तुम्ही को तो ढूंढ रहा था।
1: आई डोंट बिलीव यू।
0: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन?

0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
1: ओ सुनो अली बाओ,
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे किवी, ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं अभी आई।
1: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
2: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
2: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
1: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
2: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
1: डोंट बी सो सीरियस,
2: आओ बाहर चलो।
1: नीना आई?
2: ओ यस, ये साथ उसके डैडी आए हैं क्या?
1: डोंट बी स्टूपिड, उसका हस्बैंड है।
2: नहीं यार, ये तो उम्र में नीना से कम से कम 20 साल बड़ा लगता है।
1: लगता ही नहीं है भी।
2: सच? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं।
1: क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता?
2: कैसे हो सकता है, मैं नीना को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई, किसी जमाने में बहुत दोस्ती थी हमारी।
2: अच्छा,
1: जानते हो हमारी पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। उन दिनों मैं जर्मनी से लौटा ही था, एक रोज शाम को ग्रीन लाइट के बाहर मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
3: कीवी का?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, कीवी से तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।
3: हाँ तो फिर क्या हुआ?
1: मैं वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा था, काफी देर हो चुकी थी, वो नहीं पहुंची। तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की भी वहां मेरी ही तरह खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, वो भी काफी देर से खड़ी खड़ी बोर हो चुकी थी। एक आध बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। तब अचानक मेरी तरफ वो बढ़ी और मैं
0: आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं?
1: जी जी हाँ, किसी को यहाँ 6:30 बजे आना।
0: और वो नहीं आई?
1: आई
0: ऑफ कोर्स, अगर किसी लड़के को आना होता तो आप 10 मिनट इंतजार करके चले गए होते, और अगर आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते तो आप इतने बेचैन न होते।
1: आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी
0: है। अच्छी होती तो मैं वक्त पर न पहुंचकर आधा घंटा लेट आता।
1: आई सी, आप भी किसी का?
0: जी हाँ, उसे भी 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो वक्त पर पहुंच भी सकते हैं या नहीं।
1: और कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर कोई काम निकल आता है।
0: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रांग होनी
1: चाहिए। देखिए अब हम दोनों को ही इंतजार करना है, तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद मी।
0: मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं, अकेले बैठना बहुत ऑड सा लगता है।
1: मुझे भी, इसीलिए तो आइए ना।
0: चलिए
1: सर, दो कॉफी। आप कुछ और लेना पसंद करेंगे?
0: नो थैंक्स, बस कॉफी ठीक रही।
1: बस दो कॉफी ले आओ।
2: यस सर।
0: जगह मुझे बहुत पसंद है, आप यहाँ अक्सर आते
1: हैं? नहीं नहीं, यूं ही कभी कभी। आप जिनका इंतजार कर रही थी?
0: He's a friend of mine.
1: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर वो इस वक्त आ जाएं तो आपको मेरे साथ बैठा देखकर बुरा तो नहीं मान जाएंगे?
0: ओह नो, वो क्यों बुरा मानने लगा, उससे मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की थी, 7 बजे की नहीं। आप अपनी बात कीजिए।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: शुगर?
1: एक चम्मच।
0: गुड, मैं भी कॉफी में सिर्फ एक चम्मच चीनी पसंद।
1: मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है, वैसे यूरोप में लोग कॉफी बिना चीनी और दूध के पीना ही पसंद करते हैं।
0: तो आप यूरोप हुए?
1: जी हाँ, मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया था।
0: क्या करते हैं?
1: मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया।
0: आई सी, आपने फॉरवर्ड मोटर्स का नाम तो जरूर सुना
1: है। जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म है,
0: मेरे डैडी ही उसके मालिक हैं।
1: ओह आई सी।
0: कॉफी अच्छी है?
1: जी हाँ जी हाँ,
0: मैं भी डैडी के साथ अमेरिका गई थी, लौटते हुए यूरोप जाने का भी इरादा था, लेकिन डैडी को जल्दी इंडिया वापस पहुंचना था, बस जान से नहीं मिला। वहाँ कितना कुछ है देखने को।
1: बहुत, लेकिन मैं भी ज्यादा घूमा नहीं, बस पढ़ता ही रहा।
0: Really? How unlucky.
1: आपके दोस्त आए नहीं?
0: आपकी भी तो
1: वो तो बाहर से ही लौट गई होंगी।
0: Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से आप?
1: नहीं नहीं, आपसे मिलना भी तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी।
0: आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं
1: बोला। तो आइए अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें, मेरा नाम विक्रम है।
0: मीना, मैं साइकोलॉजी में एमए

0: उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे।
1: ओह नो, बल्कि आपने तो मुझे और बोर होने से बचा लिया। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी
1: नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस या
0: बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मैडम, वो मेरे पास नहीं है। सर्विस कर रहा हूँ मैं, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ।
1: बिग शॉट,
0: बस रोटी पानी का खर्चा चल जाता है।
1: एक पर्सनल सवाल पूछूं?
0: पूछिए।
1: आप एंगेज्ड हैं?
0: ओह नो। आप?
1: डैडी जल्दी ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर मैं अभी नहीं चाहती।
0: ठीक ही है, यू लुक स्वीपिंग।
1: आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम।
0: अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई, मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकती हैं। वैसे कॉलेज में यार दोस्त मुझे विकी के कभी पुकारते थे।
1: अच्छा
0: जी हाँ,
1: सच बहुत मजा आया आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए, घर पर आज डिनर है, कुछ लोग आ रहे हैं।
0: ओह श्योर।
1: अगर आप बुरा न माने तो मैं दे दूँ।
0: आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं।
1: अच्छा फिर कभी मिलिएगा, कभी घर पर आ जाइए या टेलीफोन ही कर लीजिए।
0: ओह श्योर, आपसे तो हमेशा ही मिलकर खुशी होगी।
1: बाय,
0: गुड नाइट। बस फिर टेलीफोन कॉफी अपॉइंटमेंट करते करते हम लोग लगभग रोज ही मिलते। एक आध बार कमला, तुम नहीं जानते हो,
2: वही जिसका तुम सब इंतजार कर रहे थे।
0: हाँ, वो भी नीना से मिली, लेकिन दोनों के बीच इतना फर्क था कि निभ ना सकी। उन दिनों मेरे दिमाग में अजीब हलचल थी, समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, किधर जाना है। कमला ने कभी मुझसे साफ साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं जानता था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नीना सिर्फ दोस्त थी, शादी होने का सफारी पैदा नहीं होता। फिर भी उससे मिलने को, उससे बातें करने को बहुत मन करता था। हम लोग ग्रीन लाइट में घंटों बैठे बेशुमार बातें किया करते। मुझे याद है एक रोज मैंने इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी।
1: शादी विकी मैं समझती हूँ एक अरेंजमेंट है, इसकी बुनियाद किसी भी सेंटिमेंट, मेरा मतलब है भावनाओं पर नहीं रखनी चाहिए। आज के जमाने में चाहे अच्छा समझ लो या बुरा, जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ये जो फजूल लव प्रेम इश्क मोहब्बत की बातें हैं ना, सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही अपील करती हैं, मैं कम से कम मुझे तो नहीं करती।
0: लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मैं कमला को नहीं भूल सकता।
1: क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और उसकी भी शादी नहीं हुई, और फिर भूलने की जरूरत भी क्या है, शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हैं।
0: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है।
1: हो सकता है, बचपन में इमेच्योर माइंड होता है ना, बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती है, और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें। देखो ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में उठना बैठना है, तुम्हारे इंटरेस्ट और उसके शौक एक से होने चाहिए। भी बुरा न मानना विकी, बट कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
0: नहीं, बुरा मानने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कई लिहाज से मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ।
1: इसीलिए ना कि इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए तो हम दोनों के
0: छोड़ो, ऐसी बात सोचने से भी क्या फायदा।
1: क्यों नहीं विकी, आखिर क्यों नहीं? तुम इसलिए ये बात कहते हो, डरते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ।
0: ये भी एक अहम वजह है।
1: गरीब लड़की अगर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसकी दौलत में शेयर कर सकती है, तो तुम मेरी दौलत से भागते क्यों?
0: छोड़ो नीना, मुझे उलझन होती है।
1: तुम्हें अपने आप पर एक बार नहीं है विकी?
0: हो सकता है, लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे डैडी,
1: मेरे डैडी को मेरी खुशी चाहिए, और अपनी खुशी के लिए मुझे तुमसे बढ़कर और क्या मिल सकता है।
0: नीना,
1: सिर्फ एक बार विकी, प्लीज मेरे साथ चलकर डैडी से मिल लो।
0: अच्छा,
1: अभी, आज ही, इसी वक्त।
0: इसी वक्त? ये कौन सा वक्त है, डिनर टाइम हो रहा है।
1: नहीं नहीं, अभी अभी।
0: अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी,

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी जो शहीद।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। रात के 8:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम गीत गुंजन। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
4: सुनिए,
5: कहिए, कहिए,
4: सुनिए।
6: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें

0: वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी अयोध्या के FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम गीत गुंजन। मैं हूं आपका साथी अजीत और आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत

आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन कभी मुस्कुराहटों की धूप लेकर आता है तो कभी चिंताओं की छांव। मन भी कभी उड़ान भरता है तो कभी किसी याद के किनारे ठहर सा जाता है। अगले आधे घंटे में हम सुनेंगे ऐसे ही कुछ मधुर फिल्मी गीत जो जिंदगी और मन के विभिन्न रंगों को शब्द और सुर देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत की। गीत लिया है हमने फिल्म अंदाज से, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

क्या लेकर आएगा। जब हम हर दिन को एक नया अवसर की तरह स्वीकार कर लेते हैं तब छोटी छोटी सी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनते हैं अगला गीत जो हमें याद दिलाता है कि मन की जो उम्मीदें हैं वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जयदेव ने।

0: कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हेलो
4: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
5: माय नंबर इज 7376804090।
6: लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: गीत गुंजन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, कभी कभी जीवन की भागदौड़ में मन थक सा जाता है। ऐसे समय में जरूरी होता है कि थोड़ा सा रुका जाए, खुद से मिला जाए और अपने भीतर झांका जाए। मन को समझना भी एक कला ही है, क्योंकि वही हमारी खुशियों और सपनों का सबसे बड़ा साथी होता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अब एक ऐसा गीत जो दिल की गहराइयों और भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करता है। सुनते हैं फिल्म मौसम का ये प्यारा सा गीत। लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज है। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

दोस्तों, बीते हुए समय की यादें अक्सर मन के आंगन में दस्तक देती हैं। कुछ यादें मुस्कुराहट बनकर आती हैं तो कुछ हमें जीवन की सीख देकर चली जाती हैं, लेकिन हर याद हमारे व्यक्तित्व को थोड़ा और समृद्ध बना जाती हैं। अब पेश है अगला गीत, जो जीवन की राहों में मिलने वाली खुशियों और उम्मीदों को समर्पित है। फिल्म का नाम है गाइड और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है SD बर्मन का।

दोस्तों, जब मन में विश्वास हो कि मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, जीवन हमें बार बार अवसर देता है कि हम गिरकर फिर से उठें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। यही जिजीविषा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भावना के साथ सुनते हैं आज का अगला और अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म डोर से। शफाकत अमानत अली खान और सलीम मर्चेंट की आवाज है। गीत को लिखा है मीर अली हुसैन ने और संगीत सलीम सुलेमान का है।

दोस्तों इसी प्रेरणादायक गीत के साथ आज के गीत गुंजन कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है आज के गीतों ने आपके मन को छुआ होगा और जिंदगी को देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिया होगा। जीवन चलता रहता है और उसके साथ चलते रहते हैं हमारे सपने, हमारी उम्मीदें और हमारे अपने लोग। आकाशवाणी अयोध्या के FM 101.9 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारी ये प्रस्तुति अब यहीं समाप्त होती है। मैं यानी अजीत अब आपसे इस कार्यक्रम से अनुमति चाहूंगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.9 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके ठीक बाद न्यूज एट 9, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान

0: छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए

0: पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public

0: including the residences linked to former Chief Minister Pinarayi Vijayan at Thiruvananthapuram and Kannur. The officials were attacked in Thiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches, and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। रात के 9:15 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं महफिल गजल कार्यक्रम।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
5: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
6: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
5: कॉल करें 6386907006।
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
7: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: महफिल गजल की पहली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का गजलों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
0: FM बैंड 101.9 पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
3: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज
4: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
3: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
4: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
5: रखो पर्यावरण का मान पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें पर्यावरण को जहरीले धुएं रसायनों प्लास्टिक बैग प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या के आपके लोकप्रिय कार्यक्रम फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो अयोध्या को और मैं हूं आज के इस कार्यक्रम में अजीत आपके साथ। हमारा नंबर है 7376-4090। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है जो 9:30 बजे से 10:30 बजे के मध्य आता है। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम है, इस मधुर महफिल में इसको और गुलजार करिए और सजाइए। 7376-4090 ये फोन नंबर लगाइए, सुनिए अपनी मनपसंद फरमाइशी फिल्मी गानों को और कुछ बातें भी अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। देखते हैं कौन से पहले वो खुश नसीब श्रोता है जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, ये पहली कॉल है और लाइन पर अभी भी बने हुए हमारे श्रोता लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो श्रोताओं, ये कॉल तो अभी भी लाइन पर लेकिन आवाज नहीं आ रही। फिलहाल हम अगली कॉल का इंतजार करते हैं। नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, हमारा नंबर है 7376-4090। देखते हैं अगली कॉल तो आ रही है हमारे पास, देखते हैं कौन से श्रोता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
6: सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
6: हम सुखदेव लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद से बोली थे सर।
0: सुखदेव लाइट वाले?
6: जी जी,
0: जलालाबाद हरिपुर।
6: जी जी, रात में लग
0: बजा। अच्छा अच्छा, सुखदेव जी सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
6: गाना अजूबा पिक्चर का सुनाएंगे।
0: अजूबा फिल्म का कौन सा गाना सुनिएगा सुखदेव जी?
6: मैं माटी का गुड्डा।
0: मैं माटी का गुड्डा।

0: सुखदेव जी, आपका काम लाइट का ही है? और कुछ बताना चाहेंगे हमें? अच्छा, इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है सुखदेव जी।
1: गर्मी तक नहीं, तो हो चला था नहा।
0: अरे नहीं, मतलब दोपहर में दो धूप बहुत तेज हो रही है,
1: हाँ लोग तो बहुत तेज हो रहे
0: उससे बचाव के लिए कुछ अपना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं,
1: करे हम भूत के जूस बना मिलती है,
0: अच्छा मतलब
1: सही खाए।
0: आम के पन्ना का आनंद ले रहे हैं।
1: जी,
0: तो ये आम का पन्ना बाहर से खरीदते हैं या फिर मतलब घर पे ही उसको बनाते हैं और उसका आनंद
1: नहीं
0: लेते
1: सर,
0: हैं?
1: हमारे है, हमारे फरा है।
0: अच्छा, मतलब आप अपने पेड़ के आमों का आनंद ले रहे हैं।
1: जी
0: चलिए ठीक है, हम आपने जलालाबाद आपने बताया ना, जलालाबाद से आपने
1: जी
0: कॉल किया,
1: हरिपुर जलालाबाद।
0: हरिपुर जलालाबाद से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कॉल हमने शामिल की, आपकी पहली कॉल हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और इस कार्यक्रम का पहला गीत आपकी पसंद का आप तक तो पहुंच रहा है, गीत का आनंद लीजिए
1: जी सर, नमस्ते।
0: जी। नमस्कार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 73-84-40-90 ये हमारा फोन नंबर है। तो जल्दी से डायल कीजिए इस नंबर को, शामिल हो जाइए कार्यक्रम में, सुन लीजिए अपने मनपसंद फिल्मी गीतों को। देखते हैं कौन से श्रोता फिलहाल हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है, गांव शेरपुर से, जिला बस्ती से बोल रहा हूँ।
0: जिला बस्ती से चंद्रशेखर मिश्रा जी की कॉल हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है। चंद्रशेखर जी, बताएं गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: सर वही बता रहे थे, झूठ बोले का हुआ कहते काले को ऐसे डरियो।
0: फिल्म का नाम?
1: फिल्म का नाम सर जी नहीं मालूम मुझे, बहुत पुरानी है।
0: का नाम ये संभवतः बॉबी फिल्म का ये गीत है। ठीक है चंद्रशेखर जी, आप इस गाने का आनंद लें। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। झूठ

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ हमें सुकून देता है तो वो है संगीत। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचते हैं, इसी एहसास को जगाते हैं और मिलाते हैं 7386-4090। अगर आप तो शामिल हो जाते हैं हमारे कार्यक्रम हेलो अयोध्या में और सुनते हैं अपने इसी तरह के गीतों को, फिल्मी गीतों को। तो देखते हैं कौन से श्रोता फिलहाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार, नाम क्या है आपका?
1: ग्राम नंगला काच्यान, ग्राम नंगला काच्यान, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह सर से बात कर रहा हूँ। सर जी,
0: रूप सिंह जी, कासगंज से आपने हमें कॉल किया है। सबसे पहले तो अपनी फरमाइश बता दें।
1: जानवर, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे,
0: फिल्म जानवर का ये गीत आपने सुनना चाहा है। ठीक है रूप सिंह जी, आपको हम ये गाना सुनाएंगे। और कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: सर, खेती बाड़ी करता हूँ
0: कासगंज में
1: जी।
0: और वहाँ पर बराबर हमारे नियमित सुनते रहते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या के?
1: जी।
0: अच्छा, ठीक है रूप सिंह जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। फिलहाल हम आपकी
1: जी पसंद... सर, कुछ डेडिकेशन कर सकता हूँ
0: जी?
1: हेलो, किसी का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ, बिल्कुल स्वागत है एकदम।
1: पहले तो सर जी आपको
0: जी
1: अजीत शर्मा है, रोशन लाल।

0: प्रसाद के हैं, दीपक रत्तेनवला से हैं और फरुखाबाद से सतीश हैं।
1: तो ये गीत आपने अपने इन सभी दोस्तों को डेडिकेट किया हुआ है, क्यों रूप सुन
0: जी?
1: ठीक है, चलिए आपकी फरमाइश पर ये गाना हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना है हमारा नंबर 7376 80 90। फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम है और देखते हैं फिलहाल कौन से श्रोता हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: चांद अधूरा है चांदनी के बिना, आसमान अधूरा सितारों के बिना, और हम अधूरे हैं आकाशवाणी अयोध्या के बिना।
0: अरे वाह, स्वागत है आप।

0: का अपना शुभ नाम बताएं और कहां से बोल रही हैं।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही सर, इंदौर से।
0: हसीना जी बोल रही हैं इंदौर से, इन्होंने हमें कॉल किया है। हसीना जी, वहां पर आप मतलब इंदौर में आप हमारा प्रोग्राम निश्चित तौर से ऐप के माध्यम से ही सुन रही होंगी, तो क्या ये सुनना आपका आकाशवाणी अयोध्या को सुनना रेगुलर है? आप रेगुलर हमारे प्रोग्राम सुनती रहती हैं?
1: हाँ, रेगुलर सुनते रहते ना सर।
0: अच्छा अच्छा फिलहाल अपनी फरमाइश बताएं, गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: विजय तक है फिल्म का नाम और गाने के बोल रहे। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई।
0: जी बिल्कुल, ये गाना पहुंच गया आपके मोबाइल सेट तक ऐप पर। गाने का आनंद लीजिए, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर।

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल न करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो अयोध्या और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दूर दूर के श्रोता जिनकी फरमाइशें इस कार्यक्रम को खास बना देती हैं। कभी किसी की याद, कभी दोस्ती का रंग तो कभी प्यार की मिठास, फिल्मी गीत हर एहसास को खूबसूरती से बयां करते हैं। आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगली कॉल। हेलो
3: जी,
2: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
3: जी हम अयोध्या नगर दास से बोल रहे हैं। हमारा नाम आनंद बिहारी कश्यप है।
2: आनंद बिहारी कश्यप जी, आपका एक बार फिर से कार्यक्रम हेलो अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। गाना कौन सा सुनिएगा, फिल्म का नाम है और गाने के बोल बता दे जल्दी जल्दी।
3: सर हम आपके हैं कौन, दीदी तेरा देवर दीवाना।
2: हम आपके हैं कौन, फिल्म का नाम और दीदी तेरा देवर दीवाना, ये गाने के बोल है। ठीक है आनंद जी, कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे, करते क्या हैं आप?
3: जी सर,
2: आप करते क्या हैं?
3: सर हमारी अपनी दुकान है।
2: अच्छा, आपकी अपनी दुकान, किस चीज की दुकान चलाते हैं?
3: जी सर।
2: हेलो।
3: हाँ
2: जी, कौन सी दुकान है, क्या बेचते हैं आप?
3: ये हमारी खिलौने की दुकान है।
2: अच्छा, खिलौने की दुकान है अयोध्या में ही?
3: जी सर।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताइए तो खिलौनों की दुकान पर आपने रेडियो भी रख रखा है?
3: हाँ सर।
2: बराबर सुनते हैं रेडियो?
3: हाँ, प्रोग्राम तो डेली सुनते हैं।
2: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है आनंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं आपका पसंदीदा गीत फिल्म हम आपके हैं कौन से, गाने के बोल हैं दीदी तेरा देवर दीवाना। गाने का आनंद लीजिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों, रात का ये सुहाना समय और मधुर गीतों की संगत, बस यही तो है रेडियो की असली खूबसूरती। रेडियो आवाजों का वो साथी है जो बिना दिखे भी दिलों के बेहद करीब रहता है। फिलहाल आइए शामिल करते हैं हमारे अगले कॉलर को कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो हेलो जी, बोलिए। हेलो, आपकी आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम हेलो अयोध्या में कॉल लग चुकी है, अपना नाम बताएं। हेलो, जिनकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल।

0: कॉल का इंतजार करते हैं। अगली कॉल भी हमारे पास आ चुकी है, शामिल करते हैं कॉल को। हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी हम संजना बोल रहे हैं, संजना यादव यहाँ अयोध्या से।
0: संजना यादव अयोध्या से कॉल आई हुई है संजना यादव की। संजना जी गाना कौन सा सुनिएगा, फिल्म का नाम और गाने की बोल बताएं।
1: गाना हमारा है ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई।
0: और फिल्म का नाम?
1: फिल्म का नाम तो नहीं पता है।
0: दुनिया बनाने वाले, करती क्या है संजना? हाउसवाइफ है, मतलब घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रही हैं और रेडियो का भी आनंद पूरा ले रही हैं।
1: जी।
0: और आकाशवाणी अयोध्या सुनती हैं? कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: काफी समय से सुनते हैं।
0: काफी समय से सुनती हैं?
1: जी हमको 4 साल हो रहा था, देखो हम करीबन सुन रहे हैं 10-10 साल से।
0: तो मतलब शादी से पहले भी आप अयोध्या में ही थी?
1: अयोध्या में ही, लोकल में ही करेंगे।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले भी सुन रही थी अभी भी सुन रही थी। जो गाना आपने चूज किया है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये गाना 1966 की फिल्म तीसरी कसम का है। तो हम देखते हैं हमारे पास ये फिल्म। जी बिल्कुल है। और
1: फिल्म का ज्यादा शौक नहीं है ना, गाने का ज्यादा शौक है।
0: गाने का ज्यादा शौक है, तो अगर आपको यहाँ फरमाइश देनी है तो कम से कम ये तो कोशिश करिए कि आपको फिल्म का भी नाम याद रहे।
1: जी,
0: जी बिल्कुल। संजना हम आपकी कॉल शामिल कर चुके हैं और आपका गाना भी अब बजने जा रहा है, गीत का आनंद लीजिए।
1: थैंक यू
0: कॉल करने के लिए, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: कार्यक्रम चल रहा है। हेलो अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 7376804090 ये फोन नंबर लगाकर देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन से हैं। हेलो।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जिला बलरामपुर, ग्राम देवरिया, थाना सादुल्ला नगर, इश्तियाक अहमद बावर्ची।
0: इश्तियाक अहमद बावर्ची जी का कॉल हमारे पास जिला बलरामपुर से आया हुआ है। कौन सा गाना सुनेंगे इश्तियाक अहमद जी?
1: गंगा जमुना का सुना दीजिए।
0: गंगा जमुना
1: का हाथों पर जोड़ा बिछड़ गया।
0: जी बिल्कुल। इश्तियाक अहमद जी, ये पूरा बावर्ची वाला ही काम करते हैं आप?
1: हाँ, शादी का हुकुम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो बलरामपुर में आपका काम धाम अच्छा चल रहा है?
1: हाँ चल रहा है सर जी, गर्मी बहुत बढ़ रहा।
0: गर्मी तो बहुत है, तो हीट स्ट्रोक वगैरह को लेकर के भी हम आकाशवाणी अयोध्या से समय समय पर जो है ढेर सारी चीजें बताते रहते हैं कि कैसे आप अपना उससे बचाव करें, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा।
1: आदत पड़ गया सर जी, आदत
0: ना? नहीं नहीं, इस समय
1: रहते रहते आदत पड़ जाता है।
0: आदत तो देखिए इश्तियाक जी, आदत तो है, ठीक है, हो गया, सही है, आपका शरीर धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेगा चीजों को, लेकिन इधर भी जो लू चल रही है, हीट वेव जिसे कहते हैं, तो वो लू से हमको आपको थोड़ा सा बचना है। उससे होता क्या है ना,
1: पानी बहुत ज्यादा पीते है ना, उसी से बचते है।
0: पानी खूब पीजिए और कोशिश करिए कि थोड़ा सा लू से बच करके रहें, क्योंकि अगर लू के अगर चपेटे में आ गए आप, तो होता क्या है कि आपके शरीर के अंदरूनी अंग भी उससे प्रभावित होते हैं।
1: पानी भी पीते हैं, ग्लूकोडी भी पीते हैं, रखते हैं साथ में। हाँ
0: जी जी जी बिल्कुल, अपना ध्यान रखिए।
1: सब रखते हैं, नींबू पानी भी पीते हैं, सबको व्यवस्था रखते हैं
0: जी। इश्तियाक जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं फिल्म गंगा जमुना का ये प्यारा सा गीत जो आपने चूज किया है, लता मंगेशकर का। जी नमस्कार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो अयोध्या चल रहा है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। 7386-4090 हमारा फोन नंबर है, जल्दी से शामिल हो जाइए हमारे कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। अभी भी हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय शेष है, देखते हैं कौन से श्रोता अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
1: सर, संजय वर्मा बात कर रहा हूं, नजीबाबाद से।
0: संजय जी की कॉल है हमारे पास। संजय जी, गाना कौन सा सुनेंगे? फिल्म का नाम और गाने के बोल बता दे जल्दी से।
1: फिल्म बेटा का गाना सुनवा दीजिए।
0: गाने के बोल क्या
1: है? मेरी, मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना।
0: ठीक है संजय जी, ये गीत आप तक पहुंच गया, कॉल करने के लिए धन्यवाद, फिर से कॉल करिएगा थोड़ा सा रुक करके। ठीक है,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी

0: उफ, तपती दोपहर और झुलसाती गर्मी, ऊपर से हर साल बढ़ती हीट वेव का खतरा।
1: सावधान, लू जानलेवा हो सकती है, मगर थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है।
2: दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, पानी खूब पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनें, धूप में छतरी टोपी या गमछा जरूर लें, साथ ही जरूरतमंदों और पशु पक्षियों को भी पानी दें।
0: हीट वेव से डरे नहीं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
3: और भाई साहब क्या हाल है?
4: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
3: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
4: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय

0: की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो।
3: हेलो अयोध्या, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 7376 4090 ये हमारा फोन नंबर है। देखते हैं कौन से अंतिम श्रोता है इस आज के कार्यक्रम के, जो हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो
4: जी सर, नमस्कार।
3: जी नमस्कार,
4: सबिया से दिलीप गिरी बात कर रहा हूँ सर जी।
3: दिलीप गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सब जल्दी से अपना गाना बता दे, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
4: सर जी, महबूबा फिल्म का गाना सुनना है, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा।
3: ठीक है, बज गया ये आपका मन चाह गीत कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन रुक कर दोबारा से जरूर कॉल करिएगा, ठीक है दिलीप जी? ओके, गाने का आनंद लीजिए।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का हेलो इधर कार्यक्रम समाप्त होता है। मुझे यानी अजीत को दीजिए अब अनुमति, अपना प्यार और फरमाइशें यूं ही भेजते रहिए कार्यक्रम हेलो अयोध्या में, क्योंकि आपके साथ ही सस्ती हमारी ये महफिल। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों और गीतों के साथ। FM बैंड 101.9 पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो अयोध्या कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

बैंड 101.9 पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक

राष्ट्रपति ने ईद उजुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।